सुप्रभात। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

0: मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
2: प्रार्थना दिल से, भाव से, विचार से, समर्पण से होनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका मन विचार ठीक होकर सूक्ष्म हो जाता है और आप वर्तमान में होते हैं। हम लोग अपने आप को संसारी कहकर साधना करने से बचाते हैं। जीवन में सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। भक्त के लिए सानिध्य जरूरी होता है कि प्रभु मेरे हैं, मौजूदगी महसूस करें। जब हम मौजूदगी महसूस करते हैं तो प्रभु वही हैं। खुद की मौजूदगी महसूस करें कि हम हैं। आप अपने आप को महसूस करें, प्रभु को महसूस करें। जीवन में सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए, वो है भक्ति और मुक्ति। जब दोनों हैं तो जीवन सफल है। हम अपने जीवन को ध्यान ज्ञान में परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करें। जिस जीवन में ध्यान ज्ञान नहीं, वो जीवन कूड़ा करकट के समान है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाता है। ज्ञानी अपने आप सभी के सामने झुकते हैं, अज्ञानी अकड़ कर चलता है। तो तुम कौन हो, खुद देखो। चेतना सबकी एक ही है, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही, सभी के अंदर वही चेतना काम कर रही है। हम सब चैतन्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। व्यक्ति के शरीर से नहीं बल्कि उसकी चेतना से संबंध बनाओ। यह संबंध सानिध्य का होगा। सभी को परमात्मा का स्वरूप मानो। हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना सभी में है। हम जिसको चाहते हैं उसकी याद बराबर आती रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों याद आ रही है। प्रभु को चाहो, प्रभु याद आने लगेंगे। हम सपने को पकड़कर नहीं बैठते हैं, इसी तरह हम संसार की चीजों को लेकर नहीं बैठेंगे। जब जान जाते हैं कि ये सब सपना है तो हम कभी आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सभी सपना है। किस किस को पकड़ोगे? तुम पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। संसार एक सपना है, जैसे नींद से आया सपना जागने के बाद नहीं रहता। उसी प्रकार हम जान जाते हैं कि किस तरह सपने आते हैं जाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति वस्तु संसार में आते हैं और जाते हैं। सेवा करो, सेवा से मन शांत हो जाता है। जब सेवा करते हो तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहो, अन्यथा ये सेवा व्यापार हो जाती है। सांस को देखो, समझने की कोशिश करो, यही जीवन है और जीवन जीने की कला। जब हम समझने लगते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, अब पास में हैं, तो हम थकते नहीं। कोई बच्चा कहीं जाते वक्त थक जाता है तो हम कहते हैं, देखो वो दिख रहा है। इसी प्रकार समीप समीप कहकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। हम काल और स्थान के समुचित व्यवहार नहीं करते। काल और स्थल के हिसाब से चलें और महसूस करें। हम जिसको पाना चाहते हैं उसको नजदीक समझें, जल्द ही उसको पा लेंगे।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आत्मचिंतन के संबंध में विचार। वाचक स्वर था विनय ध्यानी का। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं ये मातृवंदना।

मातृवंदना की बात आई, सभी देवी देवताओं में अग्रगण्य मंगल मूर्ति और वन वांछित फल देने वाले सिद्धि विनायक भगवान गणपति की स्तुति करते हैं और सुनते हैं ये भक्ति रचना उदित नारायण के स्वर में।

एक सेतु बनाए दोनों के लिए समय हो, यानी कि सारा दिन इंटरनेट के पीछे पड़े रहो, इंटरनेट की तरफ भी जाओ, वाईफाई चाहिए लेकिन वाई आई एम हियर, केवल वाईफाई का सिग्नल मत खोजिए, अपने भीतर के डिवाइन सिग्नल को भी पहचानिए कि अंदर क्या चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है। इसलिए आज योग की नियम से करने की जरूरत है। योगा कनेक्ट टू योर बॉडी, काम्स योर माइंड, कनेक्ट टू योर सोल, एंड व्हेन दिस हैपेंस, बिलीव मी, काम इज नॉट ओनली आउटसाइड, इज देयर इन द कॉर्नर, यू विल बी ऑल्सो वेरी काम। यही तो चाहिए, शांति प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ता। आंखें बंद की, योग किया, ध्यान किया और शांत हो गए, मस्त हो गए। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव ना बनो, नेगेटिव नैरेटिव ना बनाओ। नेगेटिव नैरेटिव है भैया, अपने लिए भी परेशानी करते हैं, राष्ट्र के लिए भी। इसलिए मैं तो नेगेटिव नैरेटिव वालों को कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा योग करो, सारी नेगेटिविटी शांत हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाओगे। और ये शुरुआत एक छोटे से कदम से हो सकती है। आइए आज एक आसन करें, कल दो करें, परसों तीन करें, पर रुकिए मत। योग का मतलब है परिपूर्णता, योग का मतलब है निरंतरता, योग का मतलब है रोज करें, एक कदम योग की ओर नहीं बल्कि हर कदम योग की ओर, 100 कदम स्वास्थ्य की ओर, शांति की ओर, जागरण की ओर। और हम भी जब नेचर में जाए ना, हमें भी ध्यान देना है। व्हेन वी गो टू द नेचर, बीइंग विद द नेचर, वी हैव टू चेक अवर नेचर एंड देन चेंज अवर नेचर। बस जाएं, मस्ती करके ना जाएं। व्हेन यू आर इन द नेचर, जस्ट क्लोज योर आईज, बी विद द नेचर, देन चेक योर नेचर, देन चेंज योर नेचर। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, थिंग्स चेंज। और दूसरा साइलेंस, मौन को अपना गुरु बनाया उन लोगों ने। आज हम लोग फोन पे लगे रहते हैं यार, फोन पे नहीं, मौन की ओर जाओ, फोन करो लेकिन सारा दिन नहीं। शुरुआत फोन से मत करो, सवेरे उठकर मौन से करो, और अंत फोन से ना करो, देखते देखते स्क्रॉल करते हुए सो जाओ। मुझे लगता है शुरुआत भी मौन से करो, ध्यान से करो, और अंत भी अपनी रात्रि का मौन से करो और ध्यान से करो। मुझे लगता है अगर आपको कहूं मैं, सोने से एक घंटा पहले मोबाइल फास्टिंग, नो मोबाइल, मोबाइल फास्टिंग। इसलिए ऋषियों ने देखा वहां पर, उन्होंने इसका अनुभव किया, ये उनकी तपस्या का प्रसाद है। इसलिए उन्होंने किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए दिया। इसलिए संभव हो तो योग को सवेरे सवेरे उठकर खुले स्वच्छ हरित सुरम्य वातावरण में करिए। उगते हुए सूर्य की किरणों के बीच गार्डन में जाइए, छत के ऊपर बैठ जाइए, वृक्षों की छाया में, पक्षियों के मधुर स्वरों में, नदियों के तटों पर, प्रकृति की गोद में। किया गया योग केवल शरीर को नहीं बल्कि हमारे भीतर तक हमें स्पर्श करता है। प्रकृति के निकट किया गया योग हमें पंच महाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जोड़ देता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि इस प्रकृति के साथ शुरू करें, आपकी प्रकृति भी चेंज हो जाएगी। दूसरा एक बात और मुझे लगता है, मान लिया आप ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, शॉप में हैं, वर्क प्लेस में हैं, तो नो प्रॉब्लम, जब भी थोड़े टेंस हो बस सीधे बैठिए, वहीं बैठकर कपाल भाती कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए, भीतर उतरिए, गहरे उतरिए, आप देखेंगे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर का ध्यान बीच बीच में, ये हर घंटे दो घंटे में आंखें बंद कर लीजिए, भीतर उतरो, गहरे उतरो, आप देखेंगे इंस्टेंट। लोग कॉफी तो ढूंढते हैं लेकिन इंस्टेंट, अगर आपको रिलीफ चाहिए, आप सच मानिए, पीस चाहिए, तो आप भीतर उतरो, योग वहीं शुरू कर दो जहां बैठे हो। इसलिए घर घर योग, इसलिए हर घट योग, ऑफिस में योग, अपनी कार में योग। लेकिन कार में योग करो भैया तो कार खड़ी करके करना, कार को चलाते समय नहीं। कार के चलाते समय योग इतना है, अपनी ब्रेक पे ध्यान रहे, स्पीड पे ध्यान रहे, नो स्पीडिंग, और साथ साथ बातें करते हुए नहीं, मोबाइल से बात करते हुए नहीं, बल्कि जब योग ये सिखाता है कि फोकस कैसे करना, तो आप कार में जब यात्रा कर रहे हैं तो फोकस उसी काम पर करें जहां जो आप कर रहे हैं, तो जीवन योग बन जाएगा। इसलिए योग कीजिए, स्वयं से भी जुड़िए, अपनी दिव्यता को पहचानिए, अपने जो मेरे भीतर विद्यमान है और वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए है। आपको ये नहीं सोचना है
छोटे के लिए है, बड़े के लिए नहीं है, रंक के लिए राजा

0: के लिए नहीं, वो सबके लिए है। कोई कर सकता है और जो करेगा वो मौज करेगा। देखिए, मनुष्य जन्म लेते ही सबसे पहले सांस ही तो लेता है, और जब संसार से विदा लेता है तो क्या करता है, अंतिम बार भी श्वास छोड़ता है, श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है। तो आपके पास भी तो ये बहुत सहज लेसन है आपके पास, कि मुझे कैसे सांस लेना है और कैसे सांस छोड़ना है। और जिस दिन आप ये दोनों के बीच के संतुलन को सीख लेंगे, इस श्वासों की यात्रा को समझ लेंगे, उस दिन आपको लगेगा जीवन वर्षों से नहीं बल्कि श्वासों से मापा जाता है। हाँ, श्वासों का गणित है, सांसों का गणित है, बिल्कुल कह सकते हैं। और जितना धीरे करेंगे, जितना शांतिपूर्वक करेंगे, आप देखेंगे आपकी आयु बढ़ेगी। लोग खोज रहे हैं तरीके कैसे हम 100 साल से ज्यादा जिए, लॉन्जिविटी की बात कर रहे हैं, एजिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं प्राणायाम शुरू कर दो, आपकी एजिंग प्रोसेस भी बढ़ेगा, आपको लगेगा वाओ क्या लॉन्जिविटी मिली। आयु बढ़ गई इतना नहीं, लेकिन आयु के हर पड़ाव पर आप जीवन को अच्छी तरह से जी सके, शांति से जी सके। नहीं तो सांसें तो सेट हो जाएंगी, सांसों को सेट करना भी सीख जाओगे, लेकिन उस सांसों के साथ साथ जो प्रक्रिया उसको भी सीखें कि हम कैसे करें। और अपनी सांसों के लिए जो ध्यान नहीं दे पाता, अपनी सांसों को नहीं जो समय दे पाता, और सच मानिए वो कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। हम धन का हिसाब रखते हैं, जो धन साथ नहीं जाएगा, समय का हिसाब रखते हैं, लेकिन अपनी श्वास का हिसाब नहीं रखते हैं, जो हर पल हमारे साथ है। इसलिए आज से जिस सांस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, अरे कोविड के समय आप देखिए, एक सांस के लिए डॉक्टर साहब एक सिलेंडर, सांसें बच जाएं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा घर वाले बच जाएं, सांस गई सब खत्म। इसलिए प्राणायाम बताता है कि श्वास जो है ना हमारे केवल लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवन का विज्ञान है। जीवन को ऊर्जा और जागृत करने का एक ऐसा अद्भुत प्रभावी विधा है, साधना है, जो आपको आपके जीवन को बैलेंस प्रदान करता है, जीवन में स्थिरता प्रदान करता है, मन को शांति प्रदान करता है, और मन को एक फोकस, जो आजकल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों का खो गया है, उसके लिए, स्मरण शक्ति के लिए ये प्राणायाम आप सच मानिए आपके जीवन की गति को बदल देगा। श्वास जब अस्थिर होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, तो मन अशांत हो जाता है। श्वास जब बैलेंस्ड होती है, संतुलित होती है, मन शांत हो जाता है। श्वास जीवन और मृत्यु के बीच की एक सबसे मजबूत डोर है, इसलिए इस डोर को सजगता से पकड़ लिया जाए तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। क्रोध आए तो श्वास बदल जाती है, काम आए श्वास बदल जाती है, भय लगे तो श्वास बदल जाती है, खुश होते तो श्वास बदलती है, चिंता का हो श्वास बदलती है। लेकिन यदि आप श्वास को ही बदल दें तो सब कुछ बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। इसलिए प्राणायाम करते समय आप ध्यान दें अपने पर, अपने जीवन पर, सच मानिए रोज करें, थोड़ा सा समय करें। मैं कहता हूं आप 10 मिनट से ही शुरू करें, ज्यादा समय नहीं होता है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, फिर 20 मिनट तक करें, आप देखेंगे फिर लगेगा, जिस दिन आप प्राणायाम नहीं करेगा लगेगा कुछ खाली खाली लग रहा है, कुछ यार जान नहीं है, करके तो देखो, जान आ जाएगी, ऊर्जा, उल्लास, उमंग, उत्साह, जीवन भर जाएगा, करके देखो, अरे यार हम 75 में आ गए, इतनी मस्ती है अभी भी, सोचो तो सही, क्यों है, कहां से आया, कोई हम टॉनिक खाने नहीं जाते हैं, कोई मैं जिम में नहीं जाता हूं, ये छोटी छोटी चीजें जो संतों ने सिखा दी थी, उन सब चीजों, जिम में भी जाओ नो प्रॉब्लम, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी करो, उसके साथ इसको भी जोड़ दो, और जब जब तनाव हो प्राणायाम करने बैठ जाओ, देखो आपको कितना लाभ होगा। इसलिए रोज करो, प्राणायाम भी करो, और अपनी श्वासों के प्रति सजगता भी रखो, श्वास को साधो, जीवन सज जाएगा। प्राणायाम कीजिए, प्राणवान बनिए, प्रकाशवान बनिए, हर श्वास में ईश्वर का स्पर्श है, इसको भी पहचानिए और इसको भी जिए, काम बन जाएगा।
1: श्रोताओं, देखा आपने, स्वामी जी ने प्राणायाम की जो नई हमें आयाम और नई परिभाषा दी है, उससे जरूर लाभान्वित होंगे। स्वामी जी, कुछ और जिज्ञासाएं हैं हमारे श्रोताओं के मन में। योग और ध्यान, क्या हम इनको एक दूसरे के पूरक माने या दो अलग अलग रूपों में इनको देखा जाना चाहिए?
0: जो हमारे ऋषियों का अनुभव है और मेरा भी अनुभव है, योग और ध्यान दो अलग अलग मार्ग नहीं है, ये जीवन की एक यात्रा है। और यदि योग शरीर को तैयार करता है तो ध्यान चेतना को जागृत करता है, यदि योग द्वार है तो ध्यान उस द्वार के भीतर का प्रकाश है, यदि योग यात्रा है तो ध्यान उसकी मंजिल का अनुभव है। इसलिए महर्षि

वहीं से ध्यान प्रारंभ होता है। आप देखेंगे ध्यान इज नॉट ए वर्ब, इज ए नाउन। इसे ध्यान को हम करते नहीं है, ध्यानस्थ हो जाते हैं, और जब हम ध्यान में मग्न हो जाते हैं तो जीवन मस्त हो जाता है। आज हमारे पास सुविधाएं तो बहुत बढ़ रही हैं, सूचनाएं बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन शांति कम हो रही है। अगर हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, हम तुरंत चार्जर खोजते हैं भैया कि चार्जिंग नहीं। एक बच्ची आई मेरे पास, कैन यू टेल मी हाउ टू बी इन पीस। मैंने कहा व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, शांति, छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा व्हाट हैपन, आई एम सो मच इन स्ट्रेस, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट। मैंने कहा हाउ ओल्ड आर यू, तो मुझे बोली 11, 11। मैंने कहा व्हाट 11, एंड यू आर सो स्ट्रेस्ड आउट। इतना तनाव, उस तनाव का दबाव इतना है कि वो रास्ते ढूंढ रहे हैं, करें क्या। तो मुझे लगता है इसीलिए बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें ट्रिगर कर होती हैं तो टाइगर बन जाते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं वो अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, दे लूज देमसेल्व्स, दे थ्रो टेंट्रम्स। व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज भीतर इतना दबाव है कि कुछ भी होता है वो हर्ट हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, उन युवाओं के लिए कहना चाहूंगा, भैया अपनी संस्कृति में ये छोटे छोटे उपाय जीवन को महान बना देते हैं, जीवन को शांत कर देते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा योग बहुत जरूरी है, और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता, कैरियर तो बनाओ लेकिन अपने करेक्टर को मत भूल जाओ। आज की पीढ़ी, जिसे मैं कहता हूं इज नॉट द नेक्स्ट जनरेशन, इज द नाउ जनरेशन। आज की पीढ़ी जो लगातार स्क्रीन से जुड़ रही है लेकिन स्वयं से कट रही है, उनके पास इंटरनेट का कनेक्शन तो है लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन कमजोर हो जाता है। जब इंटरनेट कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति अशांत हो जाता है। योग उन्हें वाईफाई से आगे बढ़कर डिवाइन कनेक्शन से जोड़ता है, और जब युवा योग से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, संस्कारों से जुड़ते हैं, तो चुनौतियों से टूटते नहीं है बल्कि अपने जीवन में उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं कहना चाहूंगा युवाओं को कि केवल डिग्री नहीं, आपको दिशा भी चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फास्ट स्पीड व्हिच हैज नो डायरेक्शन। स्पीड तो है, डायरेक्शन नहीं है। इसलिए जो उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, वो डायरेक्शन ध्यान से मिलती है, योग से मिलती है, संस्कारों से। इसलिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार विकास की बात तो करते हैं लेकिन विरासत को भूल ना जाएं, साइंस की बात तो करते हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भूल ना जाएं। वो कहते हैं आत्मनिर्भरता भी हो लेकिन आत्मानुशासन भी हो, आत्मविश्वास भी हो। उसके लिए आपको ध्यान और योग बहुत सहयोग करते हैं। आपको सफलता चाहिए लेकिन आपको प्रसन्नता भी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको योग से मिलेंगी। इसलिए योग करो, स्वयं से जुड़ो, अपने श्रेष्ठ स्वरूप को पहचानो। भारतीय संस्कृति में सब कुछ है, व्यस्त दिनचर्या में आप लोग थोड़ा सा समय निकालिए। सब कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, सच मानिए 6-6, 7-7 घंटे एवरेज टाइम हो गया लोगों का सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं, रील पे जुड़े रहते हैं, रील के बाद रील, रील के बाद रील। रील चाहिए लेकिन इतनी नहीं कि रियलिटी को भूल जाओ। समय नहीं है, प्राथमिकता क्यों नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है ये मुझे समझना पड़ेगा। जिस काम को हम प्राथमिकता देते हैं ना, उसके समय अपने आप ही निकाल लेते हैं। आपको फ्लाइट पकड़नी हो ना सवेरे सवेरे, इंटरनेशनल फ्लाइट हो, 3-3 अलार्म लगा के सोते हैं लोग, और यहां लाइफ मिस हो रही है, कोई अलार्मिंग नहीं है, दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। इसलिए फ्लाइट मिस हो जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन लाइफ मिस हो गई ना भैया, दूसरी नहीं मिलेगी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मालूम है ना। इसलिए हम मोबाइल, मीटिंग, सोशल मीडिया, रील, सबके लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जिस शरीर के और मन के सहारे ये सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए समय निकालने में संकोच करते हैं। जितना समय फिर बाद में डॉक्टरों के लिए जाते हैं, कितना टाइम देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, घंटों बैठना पड़ता है। मैं देखता हूं बड़े बड़े हॉस्पिटल में कितने लोग लाइन में लगे रहते हैं, कितनी बार जाना पड़ता है, टेस्ट कराओ, फिर रिपोर्ट लेने जाओ, फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लो। मैं कहता हूं अगर आप लोग ध्यान शुरू करेंगे, योग शुरू करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मन भी शांत रहेगा, और फिर अगर स्वास्थ्य चला गया, सब कुछ होते हुए जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए योग के लिए समय निकालो, ध्यान के लिए समय निकालो, प्राणायाम के लिए समय निकालो, अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ो,
इसलिए मैंने बार बार कहता हूं

0: एक घंटा रोज योग की डोज, बस रहोगे निरोग, करो योग, रोज करो योग करो और मस्त मस्त रहो, मौज करो, ये चमत्कार से कम नहीं होगा भैया। बाहर के चमत्कार मत ढूंढो, जीवन ही चमत्कार है, बस उससे जुड़ो और अपने जीवन को उससे जोड़ो, योग करो और ध्यान करो।
1: सटीक जानकारी दी स्वामी जी आपने। स्वामी जी, अब मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि योग दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, गंगा के पावन तट, हिमालय की पवित्र भूमि उत्तराखंड, जो देवों की भूमि है, जो दिव्यता की भूमि है, मैं इस भूमि से कहना चाहूंगा कि आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप योग को केवल करें नहीं, योग को जिएं। मुझे तो लगता है कि ये केवल योग दिवस नहीं बल्कि योग महाकुंभ है। 12 साल के बाद कुंभ आता है, हरिद्वार में आता है, उज्जैन में आता है, नासिक में आता है और प्रयाग में आता है। 67 करोड़ लोग आए थे पिछले वाले कुंभ में, सोचो तो सही। इसलिए अब समय आया है, ये योग 12 साल अब हो रहे हैं जो हमने ये इंटरनेशनल डे योग मनाना शुरू किया था। अब इस योग कुंभ में भी, इस महाकुंभ में भी भीतर उतरो, आत्ममंथन करो, उसमें डुबकी लगाओ और ये शरीर और मन को आत्मा के संगम का एक महापर्व है और इससे आपको शांति मिलेगी। और इसको केवल एक दिन तक सीमित मत रखिए बल्कि एक दिवस से आगे बढ़कर प्रत्येक श्वास में इसको जिए। योगा इज नॉट ओनली ऑन द मैट, योगा इज ऑफ द मैट। योग करो और फिर योगा इन एक्शन, उसको मत भूल जाओ। बिकॉज योगा, मैंने पहले भी कहा है, इट प्रिपेयर्स यू एंड इट रिपेयर्स यू, इट ट्रांसफॉर्म्स यू, ट्रांसफॉर्म द होल वे ऑफ थिंकिंग। आज दुनिया पूरे अकेलेपन से जूझ रही है, लोनलीनेस से जूझ रही है, ऐसे समय में योग स्वयं से भी जोड़ेगा, परिवार से भी जोड़ेगा, समाज से भी जोड़ेगा, विश्व से भी जोड़ेगा। जब आप जुड़ जाते हैं ना, बस वही योग हो जाता है और यही हमारे ऋषियों ने हमको दिया। इसलिए मैं फिर पुनः भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज इस दिन, श्रीनगर में भी पिछले साल हुआ, इस बार बंगाल की धरती पर करे, कुछ सोच सकता है? बंगाल में योग अद्भुत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक योगी ने सोचा। वो हमारे केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो योगी प्राइम मिनिस्टर है। जब वो समय निकाल सकते हैं तो हम नहीं समय निकाल सकते? सोचे तो सही, सुबह से लेकर रात 2-2 बजे तक मीटिंग चलती है, फिर भी सवेरे 5 बजे तैयार होकर मीटिंग नहीं, खुद से मीटिंग कर रहे हैं, परमात्मा से मीटिंग कर रहे हैं, ताकि योग करते करते वे और सशक्त बनकर 76 साल की आयु में भी, 76 पार कर दिए उन्होंने, सोचे तो सही। अगर वो कर सकते हैं पूरे विश्व में इतनी यात्राएं करने के बाद, अगर जीवन यात्रा को मस्त बनाना है, जुड़ो योग से, जोड़ो सबको, बस यही मेरा संदेश।
2: श्रोताओं, आज आपने देखा कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम नियमित योग का संकल्प लें और इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
4: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरम मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi joins President Draupadi Murmu in Odisha to inaugurate projects worth over 47,600 crore rupees. Government prohibits manufacture, sale and distribution of 16 fixed dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai.

0: अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: का कॉरिडोर बनना है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू होगा।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्व श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
1: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरी स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सेना के जांबाज सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा को। कारगिल युद्ध में उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हम उन्हें नमन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें होंगी और आप सुनेंगे कुछ गीत।

साथियों, कैप्टन विक्रम बत्रा 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके पिताजी स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, माताजी शिक्षिका थी। उनके पिताजी का नाम था गिरधारी लाल बत्रा और माताजी कमलकांता बत्रा थी। उन्होंने अपने जो स्कूल के समय में कई खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लिया और दिल्ली में आयोजित एक युवा संसदीय प्रतियोगिताओं के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतिनिधित्व भी किया था। इसके अलावा वो टेबल टेनिस, कराटे और भी खेलों में अपने स्कूल और कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते रहे। साथ ही साथ उनके जो भाई थे, जुड़वा भाई थे, वो भी उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस में उनके साथ थे। कराटे में वो ग्रीन बेल्ट धारक थे और उन्होंने मनाली में एक राष्ट्रीय स्तर के शिविर में भाग भी लिया था। उनकी जो पढ़ाई थी वो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से उन्होंने बीएससी मेडिकल साइंसेज में दाखिला लिया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो वायुसेना विंग थी उसमें शामिल होने के कारण अपनी जो पढ़ाई थी वो छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ से लगभग उनका 35 किलोमीटर दूर पिंजौर एयरफील्ड फ्लाइंग क्लब में एनसीसी वायु विंग में उनका 40 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम था और इसके बाद उन्होंने एनसीसी के जो सेना विंग के उसमें कैडेट रहे और भी कई क्लबों से वो जुड़े रहे। इसके अलावा उन्होंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था।

साथ ही 1996 में उन्होंने CDS की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उसके बाद जब उनका ट्रेनिंग जो थी वो पूरी हो गई, जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले के सोपोर में उन्हें पहली पोस्टिंग मिली। और उस समय वहाँ पर उग्रवादी गतिविधियाँ काफ़ी प्रभावित थी, वो एरिया काफ़ी प्रभावित था उग्र गतिविधियों से। मार्च 1998 के बीच में उन्हें मध्य प्रदेश के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल भेजा गया, जहाँ युवा सेना अधिकारियों को यंग ऑफिसर कोर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। और उनका जो ये कोर्स था 1998 में 5 महीने तक चला, और उसका उनका जब कोर्स पूरा हो गया, अल्फा ग्रेडिंग उन्होंने प्राप्त कर ली, उसके बाद अक्टूबर 1998 में सोपोर में अपनी बटालियन में उन्होंने कार्यभार संभाला। सोपोर में तैनाती के दौरान बत्रा को कई बार आतंकवादियों से सामना करने का मौका मिला, और एक ऐसी ही मुठभेड़ में विक्रम बत्रा अपनी पलटन के साथ घने जंगल में घात लगाकर हमला कर रहे थे, तभी एक आतंकवादी द्वारा चलाई गोली उनके कंधे को छूते हुए निकल गई, लेकिन पीछे मौजूद उनके एक साथी को वो गोली लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। बत्रा ने अपने साथियों को आतंकवादियों पर गोली चलाने का आदेश दिया और सुबह तक सभी आतंकवादी मारे गए। उनका मानना था कि ये गोली उनके लिए ही थी, ना कि उनके साथी के लिए।

सैनिक साथियों, कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना की 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट में सेवारत थे और उन्होंने वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में वीरतापूर्वक भूमिका निभाई। 7 जुलाई 1999 को द्रास सेक्टर में पॉइंट 4875 को पुनः प्राप्त करने हेतु एक साहसिक अभियान का नेतृत्व करते हुए वो शहीद हो गए थे।

साथियों, शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध कैप्टन बत्रा के प्रसिद्ध शब्द थे, तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा कर आऊंगा, आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं।

साथियों, युद्ध के दौरान उनके अद्वितीय साहस और लीडरशिप के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से, जो कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, से सम्मानित किया गया। हम उनकी वीरता को, उनकी शहादत को नमन करते हैं। जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शान और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म लकीर में। इस गीत को लिखा था महबूब ने और संगीत A.R. रहमान ने दिया था। अब आपको सुनवाते हैं कुर्बान फिल्म का गाना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में। समीर के लिखे शब्दों को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं क्रेजी फोर फिल्म से। आवाजें हैं सुनिधि चौहान और कीर्ति सगथिया की। शब्द रचना जावेद अख्तर की है, संगीत राजेश रोशन का।
3: डॉक्टर,

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं खुशी फिल्म से। इस गीत को गाया है हेमा सरदेसाई और केके ने। समीर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे खुशी फिल्म का ये गीत, जिस गीत को गाया था हेमा और केके ने। शब्द रचना समीर की थी, संगीत अनु मलिक का। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, लंदन ड्रीम्स फिल्म से जुवीन गर्ग की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: ए भाई भाई बहुत खुश लग रहा है भाई, बात क्या है? ए भाई हुआ क्या? ए भाई हुआ क्या? ए भाई बोलना यार, हुआ क्या?
1: गट चप वाले
0: ए भाई

0: लंका को स्टोरी सुनाना स्टार्टिंग से सुनाना। भाभी को घुमाने के लिए किधर ले गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया, किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसी कार क्या होता है?
1: अरे जिसमें किस करते हैं यार।

0: जीनियस है, फिर क्या हुआ?
1: कभी चूमती इधर कभी चूमती उधर, अरे बोले मेरे मुन्ना इतने साल थे कि थर।
0: ऐसा हो गया भाई।

0: भाई
1: पिज़्ज़ा
0: नहीं रे,
1: चाइनीज हक्का नूडल
0: नहीं रे, सर्कस सर्कस
1: सर्कस का हूँ।
0: अरे सर्कस में शेर है ना यार,
1: तो
2: रिंग मास्टर को 100 का नोट दिखाया, उसने जोर से फिर हंटर घुमाया।
1: हंटर हंटर क्या हुआ?
2: शेर ने किया रोर, वो लपकी मेरी ओर, फिर शेर को मैं बोला ए मामू वंस मोर।
1: अरे भाई शेर को मामू बोल डाला, फिर क्या हुआ?
2: डर से उसने ऐसे मुझको गले लगाया, क्या बताऊं सर्किट, अरे कितना मजा आया।
1: ऐसा हो गया भाई।
2: हाँ।

0: Eva, volna, volge,
1: लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे संजय दत्त, अरशद वारसी और विनोद राठौर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और संगीतबद्ध किया था शांतनु मोइत्रा ने। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गीत इस संदेश के बाद।
2: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
3: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।

अदनान सामी की आवाज़ में आप अभी सुन रहे थे लकी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था अदनान सामी ने। अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, लुटेरा फिल्म से मोहन कनन और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अमित त्रिवेदी का है।

आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है और आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोतीचूर चकनाचूर से। इस गीत को गाया है यासिर देसाई और अर्जुन हरजाई ने। कुमार की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है अर्जुन हरजाई ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गाने नए तराने का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुंबई सिटी से। आवाजें हैं आफताब हुसैन और शाबरी ब्रदर्स निजार अख्तर की। इस गीत को लिखा है राशिद खान ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है, प्रस्तुत है FM न्यूज हेडलाइंस।
3: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, अब आप प्रियंका मलिक से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय सम्मान मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन एवं सामूहिक योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कॉमन सर्विस सेंटर केंद्रों पर किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पौड़ी में रन फॉर योग रैली का आयोजन किया गया। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने अधिकारियों को जमरानी बांध परियोजना से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। अटल आयुष्मान योजना के तहत चमोली जिले में अभी तक लगभग 2,39,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस को बधाई दी। कहा, नागरिकों को पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सीमांत जिला चमोली में कल होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए चमोली जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में जन कल्याणकारी योजनाएं एवं स्वनिधि महोत्सव का आयोजन कर जन समस्याओं का समाधान किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नैनीताल जिले में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन एवं निर्वाचन नियमावली को लेकर बैठक की गई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप डे का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं ताल, पंचम सवारी और तीन ताल। आइए पहले आपसे सुनते हैं तीन ताल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रदीप्त डे का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं तीन ताल और पंचम सवारी। आइए आपसे सुनते हैं ताल पंचम सवारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रदीप्त डे का तबला वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग, माफ कीजिए, ताल पंचम सवारी और तीन ताल। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा आज का अंक यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, 4:30 हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम एक कलाकार का। कार्यक्रम में एक कलाकार सुन रहे सभी श्रोताओं को सीमा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे आज के कलाकार हैं जाने माने फिल्म अभिनेता राहुल खन्ना, जिन्हें एक्टिंग तो विरासत में मिली, उनके जैसे खून में ही एक्टिंग थी। वो जाने माने फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना के बड़े बेटे हैं। आज ही के दिन 20 जून 1972 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। और भी कुछ बातें होंगी उनके जीवन से जुड़ी। जिस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था, आइए उसी फिल्म का आपको गीत सुनवाते हैं। ये फिल्म है 1947 अर्थ।

श्रोता हूँ, राहुल खन्ना की फिल्म 1947 अर्थ, जिसका कि ये गीत अभी आपने सुना, इस फिल्म से ही उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दीपा मेहता के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वो आमिर खान के साथ नजर आए थे और इस फिल्म के लिए राहुल को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। और वहीं उन्हें मिले अयान मुखर्जी, उनकी फिल्म आई थी बैकअप सिद, इसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और ये सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण जो अभिनीत फिल्म थी, इसमें वो लव आजकल में भी नज़र आ चुके हैं। बैकअप सिद्ध फिल्म का आपको ये गीत सुनवाते हैं उनका अभिनीत।

श्रोताओं, हमारे आज कार्यक्रम एक कलाकार में कलाकार हैं फिल्म अभिनेता राहुल खन्ना। आज हम बात कर रहे हैं राहुल खन्ना की फिल्मों की और उनके अभिनीत गीत आपको सुनवा रहे हैं। उनकी फिल्मों की बात की जाए तो 1947 अर्थ, ये फिल्म आई थी उनकी 1999 में और ये उनके जीवन की पहली फिल्म थी। यहीं से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी और उन्हें इस फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड भी प्रदान किया गया था। इसके बाद फिल्म आई बवंडर जो कि सन 2000 में आई थी और उसके बाद द एम्परर क्लब, ये एक हॉलीवुड फिल्म थी जो कि 2002 में आई थी और इस फिल्म में उन्होंने केविन क्लेन के साथ में अभिनय किया था। 2005 में जो उनकी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आई थी वो थी ऐलान। 2007 में एक रोमांटिक मिस्ट्री फिल्म रकीब आई थी जो कि लोगों ने पसंद की। इसके अलावा उनकी एक

और फिल्म आई थी 2008 में तहान, जो कि एक इमोशनल ड्रामा फिल्म थी। इसके बाद आई फिल्म 2008 में ही एक और रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, दिल कबड्डी। वैकप सिद्ध 2009 में आई और इस फिल्म में उन्होंने कबीर चौधरी का किरदार निभाया था। वैकप सिद्ध फिल्म में इन्हें बहुत नाम मिला और ये फिल्म इनकी बहुत पसंद की गई। उसके बाद फिल्म आई लव आजकल और ये भी इनकी एक सुपरहिट रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने विक्रम जोशी की भूमिका निभाई थी। आइए इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओ, राहुल खन्ना की कुछ फिल्में तो सुपरहिट रहीं, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जैसा कि वो चाहते थे। और यही कारण रहा कि उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूसरी ओर रुख किया और टीवी की दुनिया में अपना जलवा दिखाया। बड़े पर्दे पर उन्हें सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में रुख किया और द अमेरिकन शो में काम किया। वहीं उन्हें आईफा अवार्ड, मिस इंडिया प्रेजेंट, स्टार स्क्रीन अवार्ड सहित कई शो की मेजबानी भी की। और साल 2019 में उन्होंने दीपा मेहता के टीवी शो लैला में भी काम किया और उन्होंने अपना जो फिल्मी सफ़र था वो जारी रखा। आइए सुनते हैं उनका अभिनीत एक और गीत रकीब फिल्म से।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने आपको फिल्म अभिनेता राहुल खन्ना के अभिनीत फिल्मों के जो गीत सुनवाए और उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने जीवन में सफल रहें और अपने फिल्मी जीवन को हमेशा जीते रहें। इसी कामना के साथ आपको सुनवा रहे हैं उनका अभिनीत ये कार्यक्रम का अंतिम गीत।

शतवंश गीत के साथ ही कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न करने की सीमा सक्सेना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार के अंतर्गत अभिनेता राहुल खन्ना को। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

शाम 5:10 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम ग्राम जगत में शाम 5:45 पर आज आप सुनेंगे श्री नरेश उनियाल की गढ़वाली वार्ता। विषय रहेगा गढ़वाली माँ गीता को अनुवाद। शाम 6:30 ये समय रहेगा प्रादेशिक समाचार का। गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:50 पर और प्रादेशिक समाचार कुमाऊनी में सुनिएगा शाम 7:30 पर। कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 7:00 आप सुन सकेंगे हेलो लोकमंजरी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 7:40 पर। शाम 7:50 पर प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद। श्रोताओं के संदेशों और प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप सुनेंगे रात्रि 8:00। रात्रि 8:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सरकार के 12 साल। अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

कल प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से सामूहिक योग प्रदर्शन का सजीव प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:10 पर कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, सवेरे 10:30 पर कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून सुनिएगा रोज की तरह ही सवेरे 8:30 पर।

सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे। प्रातः 10:40 पर कार्यक्रम लोक संगीत में प्रसारित किया जाएगा विविध कलाकारों के गाए हरियाणवी लोकगीत। श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, समय वही सुबह 11 बजे। कार्यक्रम बाल मंडल में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे श्रीमती साधना शुक्ला से बाल कहानी। कहानी का शीर्षक होगा जंगल की सैर में योग का महत्व। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। शाम के 5:10 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर MOU साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा, वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले

इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है।

0: इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
4: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
3: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
4: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
3: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
4: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
3: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
5: बीस से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
6: नारी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथरल स्ट्रक्चर और अल्सरेटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
5: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
6: व्हाट्सएप 7895372936।
5: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नारी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद पुराना शिव मंदिर मुखानी चौराहा हल्द्वानी, शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।

0: सुनो अभी अपन सुनिन रैबार, और रैबार से पहली अपन सुनिन गढ़वाली गीत जितेंद्र प्रसाद का सुरमा।
1: बिल्कुल श्रोताओं, आशा करनूँ कि आप थे यो गीत भल लागनल। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम में शामिल करनूँ कुमाऊनी वार्ता। जैक विषय छू कुमाऊँ की लोक परंपरा और लोक जीवन, और वार्ताकार छन श्री आरपी पंत। तो आवा सुनू।
2: कुमाऊँ लोक परंपरा और लोक जीवन, ये वार्ता में भाग लिनेर सबै सुधी श्रोतान के सादर नमस्कार। कैल एक सामाजिक आत्मा वहाँ की लोक परंपरा और लोक जीवन में निहित हो छी। कुमाऊनी लोक जीवन उत्तराखंडक कुमाऊँ मंडलक समृद्ध सांस्कृतिक, प्राकृतिक और पारंपरिक जीवन शैली के दर्शूँच। हिमालया गोद में बसी सुरम्य कुमाऊँ अपनो लोकोत्सव और धार्मिक रीति रिवाज ने लीजिए विख्यात छ। प्रकृतिक सामीप्या कील यहाँ रुनेरनाक जीवन में सादगी, सच्चाई और सहजता परिलक्षित हो छ। ये के दगाड़ यहाँ का समाज तीज त्यारनक प्रतिले बहुत संवेदनशील रूँच। यहाँ के लोक भाषा में त्यार शब्द त्योहारक लीजिए प्रयोग करी जाँच। यहाँ बर्ताक दिन ले त्यार मनुनेक परंपरा छ। यहाँ की भाषा में व्रत कै बर्त कुनन। कुमाऊँ के कहावत बहुत प्रसिद्ध छ, जय घर धिनैल वे घर त्यार है त्यार, और जय घर नंतिन वे घर कौतिक है कौतिक। ये एक अर्थ छ कि जय घर में दूध दिनेर गोर भैंस हुनन, वहाँ रोज त्यार हुँच। मतलब धिनैल हुणाकविल अनेक पकवान वर्णन, और जनार घर में नंतिन हुनन वहाँ उत्सवाग्रस्त माहौल रोजे बनी रूँच। उसके त देशक अन्य प्रांत न की जसके यले तीज त्यार मनाई जनन, फिर लेक कुछ तीज त्यार नक विशेष महत्व छ। यहाँ के लोक जीवन में सौर मासक अधिक प्रतिष्ठा छ। सूर्यक एक अंश कें यहाँ गते या पैट कही जास। पहल पैटोक मतलब संक्रांति, या भी कहें हम एक पैट ले कह सकनो। एक पैटोक मतलब महीने की पहल तारीख, और मसंतोक मतलब महीने की आखिरी तारीख। धार्मिक अनुष्ठान तो सब चंद्रमासा के हिसाबल संपन्न होनन, लेकिन अन्य कामकाज पैटा के हिसाबल होनन। महीने कुछ तीर्थ महिलानक लीजी विशेष महत्वक होनन। उदाहरण लीजी पढ़ो अष्टिम, नौम, एकादश, पुन्यु, अमूस, इन सब तिथिन में व्रत करी जा। दान पुण्य ले करनन, अमूस के पितर ने तिथि मनी जास। ये दिन शैणी रत ते उठ घर एक साफ सफाई कर बेर दिल को लगुनन, मतलब लाल मट और गोरु गुबरे घर एक दिल लिपिबेर इमे जौ डाली जानन। ये दिन दिल में ऐपण न डाली जान। ये मान्यता छ कि अमूसिक दिन पितर घर में उनन। शैणी वैशाख कार्तिक माघ स्नानों के लिए नियम लिनन। कार्तिकक महण त त्यारे त्यार बरते बरत होनन। तुलसी मैयाक ब्या रचाई जा, हरि जागरण गीत गाई जनन। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सोणक महण घर घर पार्थिव पूजन महोत्सव होच। शिव मंदिरन में म्यल लाग रोग रोग नाशक लीजी गुरु गुबराक संतान लीजी शालिक चावल नाग पिसबेर वीक पार्थिक पूज पार्थिनक पूज करी जाए। कुछ लोग ध्यान थुमाक माटोक ले पार्थिव बणोनन, फिर उनर प्रतिष्ठा करवेर सामूहिक पूजन करी जाँच। श्रावणी पूर्णिमाक दिन रक्षाबंधना का दगाड़ जन्यो पुन्युक विशेष महत्व मनी जा। सब रक्ष और जन्या मंदिर में रखवेर उनर प्रतिष्ठा करी जाँच। जनोर बरबंद है गयो उ सब बैग में पुराण जन्यो उतारवेर नई जन्यो पैरनन। भाई बहणीनक त्यारा का दगाड़ बामण जुके ले घर घर सपना खातन में रक्ष बाधनन। रक्षोक महत्व की हुँच वीक संबंध में रक्ष बाधन बखत मंत्र बोलनन। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम अभिबदनामी रक्षे माचल माचल। सोणक महणाक संग्रतिक दिन कै कर्क संक्रांति कही जा, किले की वी दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करा। ये तिथिक महत्व एक वीर छ कि वी दिन हम हरियाल पर्व मनुनु। आज यो त्यौहार राष्ट्रव्यापी बन गयो। यो त्यौहार हरियाली, समृद्धि और मानसूनक आगमनक प्रतीकक रूप में ले मनाई जा। असौजाक महण पितृपक्ष के सोल श्राद्ध कुनन, श्राद्धाक दिन बामण जो के खानी खवाई बाद पास पड़ोसक सब लोगन के खवाई जा। श्राद्ध है एक दिन पहली एका बखत रखी जा। अधिकांश लोग पूर्व श्राद्ध पक्ष में तर्पण करनन। माघक महणाक पेट पैल पेटाक दिन एक विशेष किस्मक त्यार पुछूड़ी मनाई जा। यही दिन सूर्य भगवान दक्षिणायन बठी उत्तरायण होनन। संज्ञान लोग त स्नान ध्यान और दान पुण्य करनन, लेकिन नंतिन रत उड़वेर नैधे लिनन। उन्हें लीजी मसंताक दिन रात ही ग्यूक पिस्मक खजूर घुगुत ढाल तलवार आदि पकवान बड़ा बेर उन्हें मल बढ़ाई जाए। मलाक बिच में नारिंगाक दान गछाई जाँच। कौ ही पाख में बड़पुर रख बेर नंतिन कौ के बोलोनन, काले कौआ आजा बड़पूरी खाजा, ले कौआ ढाल तू दे में सोनू को थाल, ले कौआ बौड़ो तू दे में सोनू को घड़ो। ये मान्यता छ कि पुछूड़ियाक दिन कौरत्ती व्याण गंगा स्नान करवे राजनन और बड़पुर खनन। ये त्यार के घुगुती त्यार ले कही जाँच। भदौक महण सातों आठों उत्सव होच। हरी झाड़ा गौरा महेश्वर बना बेर उन्हें घर में स्थापना करी जाँच। श्रेणी व्रत राखनन और सामूहिक रूप एकत्र आबेर पूज करनन। ये पूजक थे पांच अनाज भिनाई भिजाई जनन, उनन थे बिरुण कुनन। पूज में बिरुणा को प्रसाद लगाई जाँच। गौरा महेश्वराक ब्याह और लीला गीत न्योली विधा में गाई जनन। तस्वे विरहक एक गीत से सिलगड़ी को पाला चला, गिन खेलना गड़ो न्योलिया। सिलगड़ी को पाला चला, गिन खेलना गड़ो न्योलिया, ता हवे हिसालू तोपो माँ उड़ना चलो न्योलिया, ता हवे हिसालू तोपो माँ उड़ना चलो न्योलिया। यशी के उत्सव गीत मडवे गोड़ाई या धानक रोपाई में हुड़ुक बजाते हुए गाई जनन। यो बात स्पष्ट छ कि कुमाऊँ के लोक परंपरा और लोकोत्सव में धार्मिक मर्यादा और पूजोक भाव विशेष रूपेल होच। यहाँ पहाड़नाक शिखरन में या तो भगवान शिवजी प्रतिष्ठित छन या माता पार्वती वास छ। ये द्विनय के लिबेर यहाँ संस्कृति बनी हुई छ। विशेष तिथि पर्वन में ई मंदिरन में बहुत ठुल म्याल लागनन। माँ कालिका, पूर्णागिरी, बिखौती, देवी धुराक बगवाल मेला, बाराही, मोस्ट मांडू, थल केदार, जौलजीवी, जागेश्वर, बागेश्वर, उत्तरायणी आदि म्याल बहुत प्रसिद्ध छन। कुमाऊँ के लोक परंपरा में लोक द्यापतन पूजना के लिए बहुत महत्व छ। गुल्ल, भनरिया, गंगनाथ, एड़ी, चौमू और गोसाणी सहित अन्य अनेक लोक देव पूजे जनन। चैताक महण एक खास त्यौहार होस जैक नाम से भिटौली या भिटौल। यो त्यौहार भाई बहनक परस्पर प्रेमक प्रतीक छ। ये महण भाई अपन बहन ही भिटौल मतलब वस्त्राभूषण और विविध पकवान लीवेर वीक सौरास जाँच। भिटौलिक इंतजार में बैणिक मन बहुत व्यग्र और उदास रोच। चैताक महण में जब कपू चढ़ बासन तभी के मैतक बहुत याद ऊँच। सुर सुर बयालो लाग्यो चैत को मैणा को, कपुआ बासन लाग्यो उदास बैणा को। ये त्यारक यतुक मान्यता है गए कि चिलिक ब्याह में विदाईक बखत पैल भिटौलिक रूप में पकवान और वस्त्राभूषण दी जनन। कुमारी कन्या नैधेवीर अपुह ठुलनक आशीर्वाद लिनन। उन्हें इज उन्हें कह चावल और फूल दीस जैल चली दिलपूज करनन। विवाद सपे चल बेटी गौक सपे घरन में जाबेर दिलपूज करनन। वहाँ बठी उन्हें चावल और फूल मिलनन। बाद में वो चावल नक पिशमक पकवान बनाबेर सपन कह बटी जा। यो त्यार पूर्व उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई नामल्ले प्रसिद्ध छ। ये प्रकार कुमाऊँ में अनेक प्रकारक त्यार पर्व और उत्सव

0: मनाई जानन। त्यार नक बितन पर बहुत निश्वास लगें और अपन प्रियजन नक याद ओण पर बटुल लगें। कुल मिलाबेर मु यो कह सकूं कि कुमाऊं को लोक जीवन पर्वतोत्सव नक प्रति बहुत संवेदनशील छ।
1: श्रोताओं अल्ले हमूल सुनी कुमाऊनी वार्ता जे एक विषय छी कुमाऊं की लोक परंपरा और लोक जीवन। और आशा करनु श्रोताओं कि आप सबू को यो वार्ता भल लागनेल, किले कि यमे हमार पौ बौ बर्तों त्यार बारक बार में और कुमाऊं की संस्कृति वहाँ की परंपरा के बार में पंतजूल भली के बता। और वो कुनी ना कि श्रोताओं कोयला जग हो वहाँ की पछाण, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा और वहाँ के जो त्यार बार छन बील हूँ छी। और कुमाऊं में तो हर दिन कुनी ना कोई त्यार बार होते रूनी, कि वहाँ का जो पिछौड़ छू, वहाँ के जो ऐपण छन, वहाँ के जो गीत छन, है ना दीपक जी, और वहाँ जो मंदिर छन, म्याल छन, सब देखण सुनण लायक होनी। और इन सब में लोगों की आस्था और विश्वास ले मस्त छू।
2: जी दीदी बिल्कुल ठीक बोले आपने कि जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति च गढ़वाली हो, चाहे कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, अपना आप में एक समृद्ध च है ना दीदी।
1: बिल्कुल।
2: और हमारा जो रीति रिवाज हैं, लोक संस्कृति, बार त्योहार बहुत समृद्ध छन,
1: बिल्कुल
2: तो ये तो हमारी एक अलग पहचान बनाउंदी।
1: बिल्कुल
2: जी
1: दीपक जी,
2: दीदी
1: बिल्कुल सही बात करिए आप सब। और अब श्रोताओं कार्यक्रम को आगिल के बढ़ूनू और आप सबों को सुनूनू एक सुंदर सा कुमाऊनी गीत हीरा सिंह राणा का स्वरमा।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: The all-new Nissan Revive अब CNG में
4: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
3: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
5: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
2: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
6: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: सुनदरो, अभी अपन सुनिन रैबार, और रैबार से पहली अपन सुनी कुमाऊनी गीत गीतांशा हीरा सिंह राणा।
8: बिल्कुल श्रोताओं, और आशा कर लूँ कि आप थे यो गीत भल लागनल, है ना दीपक जी? और अब कार्यक्रम को आगे का बढ़ूँ और कार्यक्रम में शामिल कर लूँ एक गढ़वाली वार्ता, जय एक विषय छो गढ़वाली माँ गीता को अनुवाद और वार्ता का अर्चन श्री नरेश उनियाल। तो श्रोताओं आवाज सुन लूँ।
9: जय श्री कृष्ण। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नी शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनावश्य मुख पद्माभिनिसृता। पूरी दुनिया में गीता एक अद्वितीय ग्रंथ छ। दुनिया अधिकांश भाषाओं में विद्वानों द्वारा गीता को अनुवाद करी गई। गीता पर भाष्य लिखी गई न। गीता का प्रमुख उपदेशूषणी कना कैक जीवन में उतारे जाओ। यही बात पर निरंतर दुनिया भर का मनीषियों द्वारा सतत चिंतन और शोध जारी छ। यक तक कि दुनिया का बड़ा बड़ा विश्वविद्यालयों, चाहे वो मैनेजमेंट से संबंधित होना चाहे विज्ञान की कई भी विधा से, सब जगह गीता को कुछ न कुछ संदेश अवश्य पढ़े जादू। यूं तमाम बातों से ध्यान में रखी तई मेरा द्वारा गढ़वाली बोली में गीता को रूपांतरण करने को एक छोटू सी प्रयास की गई जो कि छंदबद्ध छ। यहाँ से पूर्व श्री बच्चन सिंह नेगी जी द्वारा भी गीता को पद्यानुवाद करी गई। श्री मोहनलाल उनियाल जी जो एक चम्मा में एक प्रसिद्ध वैद्य था, उनका द्वारा भी गीता को गढ़वाली भाषा में गद्यानुवाद करी गई। श्री राम स्वरूप सकलानी जी द्वारा भी गीता को गढ़वाली में पद्यानुवाद करी गई। यूं महान आत्माओं का द्वारा जो कार्य करी गई वहाँ से प्रेरणा लेकर मैंने यो कार्य करी। गढ़वाल क्षेत्र का कई महान मनीषी जनुश्री तोता कृष्ण गैरोला जी जो कि एक प्रसिद्ध खंड काव्य प्रेमी पथिक का रचयिता रहना, श्री बचन सिंह बिष्ट जी, श्री चंद्रमोहन रतुड़ जी, प्रसिद्ध लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आदि अनेक विभूतियों का द्वारा जो गढ़वाली बोली में साहित्य सृजन करी गई वो सब इन पुस्तक की रचना को प्रेरणा स्रोत रही। मेरा प्रिय शिष्य श्री अमरीश चमोली जी जो एक प्रगतिशील साहित्यकार छन, उनकी सृजन कला से भी प्रभावित होकर मैंने इन पुस्तक रचना करने को साहस करी। बताया भी गई लाइफ ऑफ ग्रेट मैन आल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द साइंस ऑफ टाइम। यनु संदेश गीता भी दी रही, यद्यदाचरित श्रेष्ठ तद्दैव उत्तरो।

कि हमारा भीतर जो राग द्वेष छन वो तभी सक्रिय होना जब हम निरंतर मनमायों को चिंतन कर दूं, जिसी की हमारो कर्तव्य पथ विचलित हुए शब्दों यू ही हमारी अवनति को प्रमुख कारण।

शरीर को संसार में कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं छा, पर जब कई व्यवस्था में बहुत अधिक कमी है जानन, तो प्रभु अनेक रूप से अवतरित होकर यूं कमियों से दूर करने को प्रयास करदान। तभी तो बताया गया।

तुम जान लिया। गीता का मुताबिक यज्ञ ही सर्व कर्म को मूल छा। यज्ञ मा मैं की भावना नहीं हुई चेंदी, अर्थात कि मैं ये काम कर रही हूँ, नितर वो पाप को कारण।

देख देख मां सृष्टि का सभी काम निश्चित समय पर होंदी रहना ना, पर ई बात नि समझी का हम अवसणी करता मान लेनो जो कि सभी प्रकार का कष्ट को कारण बन दो सबक।

गीता का अनुसार समय ही सृष्टि को परम नियंत्रक छ, परम नियंत्रक परमाधार और परमेश्वर छ। कुछ यही बात 20वीं सदी का महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपनी सापेक्षता का सिद्धांत में बताई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये बारे में स्पष्ट बतौना छ।

मरला सब गीता जना दिव्य ग्रंथ को एक लघु वार्ता का भीतर अभिव्यक्त करनु कैका द्वारा भी संभव नीचा, चाहे वो कितनो बड़ो ज्ञानी हो, पर फिर भी कुछ बात जो आपसी करेना अच्छो लगी। अंत में मैं यूं शब्दों का साथ यत्र

0: ई शब्दों का साथ मैं अपनी वाणी संग विराम देनो। जय श्री कृष्ण।
1: सुनते रहो। अभी आपन सुनी गढ़वाली वार्ता जेकू विषय छो गढ़वाली माँ गीता को अनुवाद और वार्ताकार छा श्री नरेश उनियाल जी।
2: बिल्कुल।
1: तो दीदी देखा कितना बड़े हो गया अब ना
2: हो।
1: कि जो पहले जो हमारा ग्रंथ छो वो संस्कृत में छा हिंदी में छा और अब उनको अनुवाद जो छो अपनी बोली भाषा में भी होने पड़ गया ना।
2: बिल्कुल।
1: ये बहुत गर्व की बात है और हमारी बोली भाषा में लुक होते समझण में भी बहुत आसानी हो जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी दीदी। तो दीपक जी अब अपन श्रोताओं दगर हम चर्चा कर लूँ योग के बारे में किले की भूल योग दिवस छू
1: जी
2: है ना
1: जी।
2: तो श्रोताओं जैसे कि आप सबों को पता छू योग जो छू वो भारत एक प्राचीन संस्कृति और ज्ञान एक अमूल्य धरोहर छू और यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और हमारे आत्मा को जो संतुलित रखने की एक वैज्ञानिक पद्धति छू और योग जो छू हमको स्वस्थ सकारात्मक और तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा ले दियूँ।
1: जी दीदी बिल्कुल ठीक बोला आपन कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी चिंता तन विभिन्न जो स्वास्थ्य समस्याएं छन ये समय पर लोग योग योग करला तो योग तो एक सरल भी च और प्रभावी च समाधान बने के समय सकुदनी। तो नियमित योग अभ्यास कन से शरीर लचीलापन बनो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी ली और तो मानसिक भी शांति भी होली नी।
2: बिल्कुल। और जैसे कि आजकल हम देखने लगे कि आजकल खान पीन थे लेकर और मौसम थे लेकर हर बार हर मौसम में नई बीमारी है जाए और बिहार का खान पीन ये लेकिन कतु प्रकार की बीमारी होना तो ये बीमारियों से हम कैसे बच सकनू अगर हम अपने दैनिक जीवन में योग और व्यायाम ये इनको शामिल करूँ तो कई हद तक बची जा सकूँ।
1: जी दीदी बिल्कुल ठीक बोला आपने अपन बोले भी जानू कि कराबल योग रावा निरोग
2: बिल्कुल
1: है ना दीदी।
2: बिल्कुल।
1: तो ये हम अपने जो दैनिक जीवन में अपनाउन पड़ो योग ते ताकि हम जो छन एक स्वस्थ हो सको। प्रतिदिन हम ते कुछ ना कुछ कुछ समय निकाले के जरूर योग कर चढ़ो।
2: बिल्कुल। और दगड़ में अपन नानन नानतिनों को ले योग सिखाउन चाहिए किले की आचार जो नानतिन छन वो भैर का खान बहुत ज्यादा चटरपटर उन्हें जीव नहीं
1: जी बिल्कुल ठीक
2: बिल्कुल चिप्स पापड़ और जो तरह जो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाना ना तो उनको ले जो बीमारी थे दूर रखना लीजिए प्रतिदिन जो छू यो व्यायाम और योग यो चीज जो छू उनको सिखाउन चाहिए करूँ चाहे।
1: जी बिल्कुल। तो सुनते रहो आवा ये योग योग दिवस पर आप भी संकल्प ले आवा कि अपने दिनचर्या में योग ते शामिल करा और स्वस्थ रहा खुशहाल रहा और संतुलित जीवन ते अग्नि बढ़ावा।
2: बिल्कुल श्रोताओं और आप सबों ते एक बार फिर से योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।
1: जी दीदी।
2: तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे के बढ़ोनू और सुनोनू आपको एक गढ़वाली गीत रेखा उनियाल का स्वरमा।

सुन दो अभी अपन सुनी गढ़वाली गीत रेखा उनियाल का स्वरमा और अब भगत होगी उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को। तो थोड़ी देर में सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, प्रदेश के 8 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व प्रदेश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस को पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस को सम्मानित किया। और नीट यूजी परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से देशभर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इस दौरान देहरादून के हिमालय सांस्कृतिक केंद्र गढ़ीकैंट में आयोजित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के 8 लाख से अधिक किसानों को 159 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य के लगभग 4 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे, जबकि अब ये संख्या बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। किसानों की आय बढ़ने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 115 करोड़ रुपए के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉली हाउस बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी किए जाने के अवसर पर अल्मोड़ा जिले के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम और गोष्ठी आयोजित की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का वितरण और किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री द्वारा जारी किसान सम्मान निधि हमारे देश के किसानों का कृषि उत्पादन के लिए आधार है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का किसानों को संबोधन किसानों का मार्गदर्शन करेगा। श्री टम्टा ने कहा कि पूरे देश के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से परंपरागत कृषि के प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जो कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर एक महत्वाकांक्षी योजना का आज ये 23वीं किस्त रिलीज हो रही है और ये पीएम किसान की 23वीं किस्त के आवंटन में प्रधानमंत्री जी का आज संबोधन भी है, मार्गदर्शन भी है। विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के अंदर भी आज हमारे किसान भाइयों को गोष्ठी के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों ने जागरूकता के साथ साथ किसान सम्मान निधि से भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मिलने वाला है उसकी उपयोगिता और उसकी महत्ता को बताने का कार्यक्रम भी चलाया है। हमारे उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश भर के अंदर खेत बचाओ अभियान के माध्यम से केमिकल खेत में कम पड़े और जो हमारी परंपरागत खाद के खेत की खाद है उसी पर आधारित खेती को हम करें, जिससे कि बीमारियों को भी आमंत्रित ना करें और लोगों का जीवन भी बचा सकें। ये जागरूकता के कार्यक्रम भी लगातार सरकार के माध्यम से किसानों के बीच में किए जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सबके लिए मार्गदर्शन बना है।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 4,400 से अधिक श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में शिविर लगाकर पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को श्रमिकों के कार्यस्थलों के पास ही जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। उन्होंने श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और उनके बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र श्रमिकों को ही मिले। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन एवं सामूहिक योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी कॉमन सर्विस सेंटर केंद्रों पर किया जाएगा। इन शिविरों में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को योगाभ्यास कराया जाएगा और योग के लाभों की जानकारी दी जाएगी। इसे लेकर कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के राज्य कार्यालय ने सभी जिला प्रबंधकों एवं ग्राम स्तरीय उद्यमियों को अपने अपने क्षेत्रों में शिविर आयोजित करने और अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड पुलिस को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राज्य पुलिस के लिए संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मान देशभर में पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन संबंधी प्रदर्शन के आधार पर दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उत्तराखंड पुलिस को ये सम्मान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए उत्तराखंड पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये उपलब्धि उसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी उत्तराखंड पुलिस नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाती रहेगी। वहीं पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि ये सम्मान उत्तराखंड पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को समय पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए किए गए सतत प्रयासों का परिणाम है। प्रदेश में कल होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा के लिए केंद्र सहित जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा एवं गोपनीयता को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। वहीं सीमांत जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में कल होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए चमोली जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या व्यवस्थागत समस्या उत्पन्न न होने देने के निर्देश दिए। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून सहित प्रदेश के सभी स्थानों पर परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी है। नीट परीक्षा को लेकर देहरादून के एसपी क्राइम और एसपी सिटी ने परीक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारियों को परीक्षा के दिन निर्धारित समय से 4 घंटे पहले सभी परीक्षा केंद्रों का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नैनीताल में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन एवं निर्वाचक नियमावली से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक की गई। बैठक में राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि सभी गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन समयबद्ध और त्रुटि रहित पूर्ण रूप से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता से करें, साथ ही डुप्लीकेट एवं मृत मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाए।
3: या वो दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, कहीं पर नेटवर्क शैडो एरिया होने के कारण थोड़ा प्रगति कम आ सकता है, बट अभी तक उस पर क्या उपाय योजना है, क्या कार्य योजना है, वो अगर उन्होंने तैयार कर लिया होगा तो उसमें आगामी 2 से 4 दिन में प्रगति आ सकती है। 7 जुलाई तक पूरा होना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर एसडीएम एंड एआर रिव्यू कर रहे हैं, उस रिव्यू के आधार पर कोई अगर उपाय योजना करनी है, कोई कार्य योजना बनानी है, स्ट्रेटेजी चेंज करना है, वो कार्रवाई भी कर सकते।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, प्रदेश के 8 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस को पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस को सम्मानित किया और नीट यूजी परीक्षा कल परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत छू अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत माँ, और मीचू आपका दगड़मा ज्योति जोशी
4: और दगड़मा मीचो दीपक नेगी। जी दीदी, तो दीदी बस की हाल भी लगन वाल चे
3: होई
4: है ने?
3: बिल्कुल।
4: तो जन हमारे उत्तराखंड च एक डांडी काठी वालो इलाको च ने
3: होई,
4: तो ये हमारा जो बस की हाल च वो सिर्फ एक पानी बरसण नहीं बल्कि जो हमारी जो प्रकृति च वे ते एक नव जीवन पौन भी च ने।
3: बिल्कुल। और जी। दीपक जी, हर बार बरसात का मौसम में कतुक नुकसान हो, कतुक घटनाएं है जे ना, तो यो बस गाल का बखत शुरू होने से पहले हमको थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत छू, जैसे की पानी भरने की, भूस्खलन, बिजली गिरने की, अचानक बाढ़ जैसी जो घटनाएं होनी, तो जैल बखत रहते सतर्क रहबेर थोड़ा सुरक्षित रही जा सकूं। लेकिन क्या क्या करण छ, अपन घर का आसपास जो छत छन, टीन शेड छन, नालियां छन और जो पाइप लाइन छन उन्हें जांच कर बेर, टूटी फूटी जो जाग छन उनकी मरम्मत जो छु बखत पे करनी छ, है ना?
4: जी दीदी। और बस क्या जो लगनो चो वो सिर्फ खेत खलियान ही नहीं हरियो भरियो कर दन, और बल्कि गाढ़ गदना भी बढ़ जाना नहीं।
3: बिल्कुल। और एक हमारी खास विनती हमारा जो ऊनवाल यात्री छन, जो श्रद्धालु छन, उनते छ कि नदी नालों थे दूर रहया, किले कि नदी नालों का कोई पत्त नहीं होन, कब बाढ़ ए जो, कब जल स्तर बढ़ जो, है
4: और
3: ना?
4: हमारे जो खासकर पहाड़ों की तो पता ही नहीं चल दो कि कख बरखणो और कख गदरणो।
3: बिल्कुल, बहुत सारी घटनाएं जो छन वो सुनने में मिलनी ना, तो बिल्कुल दूर रहया, नदी नालों में नहीं जानते उसी के।
4: जी, तो दीदी अब अपना श्रोताओं तो ले जान जौनसार का छोड़ और सुन दा एक जौनसारी गीत।
3: बिल्कुल।

0: श्रोता अल्ले हमूल सुनो जौनसारी गीत भजन दास का स्वरमा और आशा करनू कि आप थे यो गीत भल लागनल और श्रोताओं भोल छ इतवार बार और श्रोताओं का अनुरोध मा कार्यक्रम तो आप अपनी पसंद का जो लग गीत आप सुनना चाहचा और पर हम गीत आपको वही सुन सकनू जो हमारा स्टूडियो में मौजूद होल तो वीक लीजिए आप झटपट हम थे हमारा पता नोट कर लियो और आप हमते चिट्ठी और ईमेल भेज सकता तो हमार पता छ चिट्ठी ग्राम जगत एट द रेट gmail.com
1: जी बिल्कुल दीदी, तो आजकल तो उन भी चिट्ठी को जो ईमेल जो झटपटागोल हो गई
0: बिल्कुल
1: है ना? और
0: तो श्रोताओ अब आज का हमारा यो ग्राम जगत कार्यक्रम यही संपन्न करने की मी ज्योति जोशी
1: और मैं दीपक नेगी थे इजाजत दिया
0: नमस्कार।

0: पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी अंजलि भट्ट।

पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड योजनाओं का लाभार्थियों तय सहायता राशि वितरित केरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर का सभी कॉमन सर्विस सेंटरों में योग शिविरों को आयोजन किए जालू। पासपोर्ट आवेदनों का सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्यकन का खातिर केंद्र सरकार उत्तराखंड पुलिस तय सम्मानित केरी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में पौड़ी में रन फॉर योग रैली को आयोजन किए गए।

0: अब समाचार विस्तार बटिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन उत्तराखंड भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का खातिर 4,400 से अधिक श्रमिकों तय डीपीटी का माध्यम बटिन लगभग 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों का खाता मां भेजी। ये दौरान मुख्यमंत्री श्रम विभाग तय श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का निर्देश देने। उन बोली कि अलग अलग क्षेत्रों में शिविर लगाकर पात्र श्रमिकों तय योजनाओं को लाभ दिए जालू। मुख्यमंत्री बोली कि श्रमिकों का कार्य स्थलों का नजीक जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था किए जाली ताकि उनका सुविधाएं मिल सकूं। उन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण और उनका बच्चों की शिक्षा तय बढ़ावा दियोन का खातिर विशेष शिविर आयोजित करने पर भी विशेष जोर देनी। आम जनता तय बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य बटिन केंद्र सरकार द्वारा संचालित अटल आयुष्मान योजना लोगों तय वरदान साबित होनी चाहिए। योजना का तहत राज्य का प्रत्येक परिवार तय प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराए जाते चाहिए। सीमांत चमोली जिला में भी ये योजना को लाभ लोगों तय मिलना चाहिए। योजना का माध्यम बटन हजारों गरीब एवं जरूरतमंद मरीज गंभीर बीमारियों को निःशुल्क इलाज कराना छिन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता का अनुसार जिला में अब तक लगभग 2,39,000 आयुष्मान कार्ड बने। योजना का तहत 72,700 से अधिक लाभार्थियों तय उपचार मिली जबकि अब तक 118,08,58,372 रुपये को उपचार कराई जी।
1: अटल आयुष्मान योजना में हमारे सभी चिकित्सालयों में जो है संचालित है, कोई भी रोगी वहाँ पे आके भर्ती होने पर इसका जो है लाभ उठा सकता है। अभी तक वर्तमान में जनपद चमोली में जो है 2,39,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिसमें जो है अभी तक जब से ये योजना चालू हुई है 72,700 लोगों ने इसका लाभ लिया है और जो इसमें धनराशि का जो व्यय हुआ है वो आपको सुन के जो है ताजब होगा कि ये 118,08,58,377 रुपए की जो है धनराशि इस पर जो है खर्च की गई है। और ये जितने भी हमारे जनपद चमोली के सरकारी अस्पताल है और अगर वहाँ पे इलाज नहीं हुआ और बाहर कहीं रेफरल होता है तो जनपद के बाहर देहरादून में या देहरादून के बाहर जो है अन्य प्रदेशों में भी इसका जो है लाभ लिया जा सकता है।
0: योजना को लाभ उठाने वाला मरीजों और उनका परिजनों को बंची कि केंद्र एवं राज्य सरकार की यह पहल गरीब परिवारों का खातिर बेहद उपयोगी साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर का सभी कॉमन सर्विस सेंटरों में योग शिविरों को आयोजन किए जालू। साथ ही नागरिकों तय योग का प्रति जागरूकन का खातिर विशेष गतिविधियां संचालित किए जाली। ये कदगड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन एवं सामूहिक योग कार्यक्रम को सीधा प्रसारण भी कॉमन सर्विस सेंटरों में किए जालू। यूं शिविरों में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ नागरिकों तय योगा अभ्यास कराए जालू और योगा का लाभों की जानकारी दिए जाली। कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का राज्य कार्यालय सभी जिला प्रबंधकों एवं ग्राम स्तरीय उद्यमियों तय अपना अपना क्षेत्रों में योग शिविर आयोजित कर एवं ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित कर का निर्देश देने। सीमांत जिला चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर में भोल होने वाली नीट यूजी परीक्षा का खातिर चमोली जिला प्रशासनन सभी तैयारियां पूरी करें। परीक्षा तय केंद्र सहित जिला मां सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किए गए। कड़ी सुरक्षा का बीच भारतीय वायुसेना का MI-17 बटन पेपर लाए गए। परीक्षा तय प्रौद्योगिकी संस्थान कोठियाला सैन गोपेश्वर तय एकल परीक्षा केंद्र बनाई। परीक्षा की सुरक्षा और गोपनीयता का खातिर विशेष सतर्कता बरतन का निर्देश देने। जिला अधिकारी गौरव कुमारन बताए कि भोल होने वाली नीट परीक्षा का खातिर सभी तैयारियां पूरी वेगिन। संबंधित अधिकारियों तक व्यवस्थाओं को जिम्मा सौंपी गई। परीक्षा का दौरान के भी प्रकार की तकनीकी या व्यवस्थागत समस्या उत्पन्न होने का निर्देश देने। वखी पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारन बताए कि जिला में परीक्षा की संवेदनशीलता तय देखता हुआ सुरक्षा का दृष्टिगत परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती किए गए।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताज़ा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: उत्तराखंड पुलिस तय वित्तीय वर्ष 2025-26 का दौरान पासपोर्ट आवेदनों का सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्यकन का खातिर केंद्र सरकारन राज्य पुलिस तय संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार बटिन सम्मानित करी। यू प्रतिष्ठित सम्मान देश भर में पासपोर्ट आवेदनों का पुलिस सत्यापन संबंधी प्रदर्शन का आधार पर प्रदान किए गए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरन उत्तराखंड पुलिस तय यू सम्मान प्रदान करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन ये उपलब्धि का खातिर उत्तराखंड पुलिस तय बधाई देंदा हुआ बोली कि नागरिकों तय गुणवत्ता पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करोण सरकार के प्राथमिकता छी। यह उपलब्धि भी दिशा माँ किए जाण वाला प्रयासों की सफलता को प्रतीक छी। उन आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी उत्तराखंड पुलिस नागरिक सेवाओं का क्षेत्र में ये प्रकार ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य को गौरव बढ़ोली। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठन बताए कि यू सम्मान उत्तराखंड पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया तय समयबद्ध पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनोण का खातिर कन वाला सतत प्रयासों को परिणाम छे। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश पर नैनीताल में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का अंतर्गत गणना प्रपत्रों को डिजिटलाइजेशन एवं निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्यों की प्रगति का खातिर बैठक हुई। बैठक में राज्य का अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगडंडेन बोले कि सभी गणना प्रपत्रों को 100% डिजिटलाइजेशन समयबद्ध व त्रुटि रहित तरीका से पूर्ण किए जालो। उन बोली कि BLO ऐप का माध्यम बटन प्राप्त आवेदनों को निस्तारण प्राथमिकता से करिया RS साथ ही डुप्लीकेट एवं मृत मतदाताओं को नाम नियमानुसार हटे जो। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करे गए। उच्च न्यायालय अब 29 जून तक खुल्लू। उच्च न्यायालय का कैलेंडर का अनुसार हाई कोर्ट में 22 जून बटन 25 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का सांसद अजय भट्टन आज जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना की समीक्षा करी। बैठक

सेवाओं उन अधिकारियों तय परियोजना बटिन जुड़ी सभी बाधाओं तय प्राथमिकता दगड़ी दूर कन का निर्देश दिनिन। ये दौरान सांसद अजय भट्टन बोली कि जमरानी बांध उत्तराखंड तय लाइफ लाइन परियोजना ची ये कपूर्ण होण से हल्द्वानी लालकुआ क्षेत्र सहित तराई भाबर तय सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिली। श्री भट्टन बोली का परियोजना बटिन 14 मेगावाट जल विद्युत की उत्पादन बोलू और बाढ़ नियंत्रण माँ भी बांध से मदद मिली। उन प्रभावित परिवारों का पुनर्वास मुआवजा वितरण एवं विस्थापन संबंधी प्रकरण तय त्वरित निस्तारण का निर्देश देने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग का संयुक्त तत्वाधान में पौड़ी में भव्य रन फॉर योग रैली को आयोजन केरी। रैली तय स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी एवं अपर जिला अधिकारी FR चौहानन हरी झंडी दिखाकर रवाना केरी। रैली का माध्यम बटिन लोगों तय स्वास्थ्य एवं संतुलित जीवन शैली का खातिर योग अपनौण तय प्रेरित करी। ये अवसर पर स्थानीय विधायक कन बोली कि योग देश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर छी जेमा पूरा विश्व तय स्वस्थ जीवन को मार्ग दिखाई छी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून प्रदेश का 8 जिलों का कुछ हिस्सों में बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने को येलो अलर्ट जारी करी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून टिहरी रुद्रप्रयाग चमोली उत्तरकाशी बागेश्वर पिथौरागढ़ और नैनीताल में कखी कखी बिजली चमकण और आंधी चलन को अनुमान जताई। मौसम तय देखता हुआ विभागन यात्रियों तीर्थयात्रियों से यात्रा की पहली मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने की सलाह देनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भवन एवं अन्य सहनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड योजनाओं का लाभार्थियों तय सहायता राशि वितरित करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर का सभी कॉमन सर्विस सेंटरों में योग शिविरों को आयोजन किए जालू। पासपोर्ट आवेदनों का सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्यकन का खातिर केंद्र सरकार खंड पुलिस तय सम्मानित करी। अरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उपलक्ष्य में पौड़ी में रन फॉर योग रैली को आयोजन किए गए। ये दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हुए। नमस्कार।

गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान साथियों, कार्यक्रम लोकमंजरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के लोकमंजरी में हम बात करेंगे अपने श्रोताओं से और उनको सुनाएंगे उनके पसंद के लोकगीत और रागिनियां। साथ ही हम बात करेंगे कृषि में शिक्षा का ज्ञान कितना महत्व है और कैसे शिक्षा कृषि को बेहतर बना देती है। यदि सही शिक्षा लेके उसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो कितना लाभ होता है। पहले हमारे किसान साथी शिक्षित नहीं थे, लेकिन कृषि तब भी बहुत अच्छे से होती थी, बल्कि ज़्यादा मेहनत ज़्यादा समय लगता था। शिक्षा ने कृषि को थोड़ा आसान थोड़ा तेज़ कर दिया है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो किसान को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी किस्मत बदल देता है और कृषि को किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी बताया जाता है। जीने के लिए अन्न जो है जितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं। अन्न कमाने के लिए ही किसान अपना जीवन लगाता है और बाकी सारी दुनिया के लोग भी अन्न के लिए ही कमाते हैं, बस तरीका अलग अलग है। आधुनिक समय में कृषि का जो है विकास हुआ है और किसान ने किस तरह से उन्नति करी है, कैसे हमारे जो किसान हैं वो शिक्षित होकर एक अलग तरह से किसानी कर रहे हैं, इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम है लोकमंजरी और हम अपने इसमें अपने कॉलर्स को लेते हैं, तो आइए पहले हम बात करते हैं अपने कुछ कॉलर्स से।

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ जी, बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी,
1: आपका कार्यक्रम कृषि जगत में लोक मंजरी में बहुत बहुत स्वागत है। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं?
0: हाँ जी मैडम, मेरा नाम रश्मि रावत है और मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ।
1: जी, आप रश्मि हैं? आप रश्मि जी, आप पौड़ी गढ़वाल से कॉल कर रहे हैं हमें। तो
0: हाँ जी,
1: आप क्या करते हैं वहां पे?
0: पौड़ी गढ़वाल में हम खेती बाड़ी, बागवानी, साग सब्जी लगाना ये सब करते हैं।
1: जी, तो आप हमारा कार्यक्रम भी सुनते हैं?
0: हाँ जी सुनते हैं।
1: तो आज हमारा जो कार्यक्रम है लोक मंजरी का, उसमें हम अपने किसानों की पसंद के लोकगीत या फिर कोई रागिनी सुनाते हैं उनको। तो अगर आप कोई लोकगीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं?
0: हाँ जी, आप कोई भी लोकगीत सुना दीजिए पौड़ी गढ़वाल की तरफ का।
1: जी, रश्मि जी। तो रश्मि जी, आप ये किसानी कब से कर रहे हैं?
0: जी ये किसानी तो हम जब हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, हम छोटे से उन्हें देखते थे। जब
1: जी, तब
0: हम
1: से ही चल
0: बड़े
1: रहे हैं।
0: हुए तो घर में सब बागवानी ही करते थे, खेती बाड़ी, गांव में पशुपालन, ये सब हमने
1: जी
0: बचपन से ही सीख लिया था, देख लिया था।
1: जी जी जी तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आजकल कृषि करना, मतलब आजकल जो है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कृषि को इतना महत्व नहीं देती है, और आप दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम में कॉल करते रहिए और हमसे बात करते रहिए, और आपकी पसंद का लोकगीत हम आपको जरूर सुनाएंगे। आपने हमें
0: धन्यवाद
1: कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: हेलो।
2: नमस्कार मैम।
1: हेलो, नमस्कार। कार्यक्रम लोक मंजरी में आपका स्वागत है। क्या हम जान सकते हैं कौन बात कर रहे हैं?
2: मैम, मेरा नाम पंकज है।
1: पंकज। पंकज जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैम, मैं केला कोई देहरादून से बोल रहा हूँ।
1: जी, सेला कुंज से बात कर रहे हैं। आप क्या करते हैं पंकज जी?
2: मैम, मेरा डेयरी फार्म है। जी
1: अच्छा, डेयरी फार्म है आपका, तो उसमें आपके
2: जी
1: पास कितने मवेशी हैं?
2: मैम, मेरे पास 17-18 जानवर हैं जी।
1: अच्छा, तो आप क्या क्या काम करते हैं अपनी डेयरी में?
2: मैम, रोजमर्रा का है, उसमें सुबह मॉर्निंग का मिल्किंग का होता है
1: हाँ जी,
2: और उनका फूडिंग का होता है,
1: अच्छा
2: और शाम का उनका वही मिल्किंग और फूडिंग का।
1: अच्छा तो फिर आपका मतलब अच्छा उत्पादन होता है दूध का?
2: जी मैम, मैं लगभग 1 क्विंटल 10 किलो के आसपास, 10 किलो के आसपास तक लेता हूँ पालन।
1: अच्छा, तो आप ये कब से कर रहे हैं डेयरी का काम?
2: मैं लगभग 2013 से कर रहा हूँ।
1: 2013 से कर रहे हैं। तो आप दूर दराज के गांव में दूध पहुंचाने का काम भी करते होंगे?
2: जी मैम, मैं भी जाता हूँ, मेरे पास एक एम्प्लॉय भी है, सप्लाई
1: अच्छा
2: होती है मैम।
1: अच्छा तो आपने पंकज जी मतलब इस चीज मवेशी पालने के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए आपने कोई कोर्स या कोई पढ़ाई भी करी हुई है? हाँ
2: मैम, मैं अपनी बात करूँ तो मैं ग्रेजुएट हूँ
1: जी,
2: और टेक्निकल वाला भी हूँ,
1: अच्छा।
2: और
1: क्योंकि जो हमारा आज का कार्यक्रम का, जो हमारा चर्चा का विषय है वो यही है कि कृषि में शिक्षा जो है वो कितना महत्व रखती है, तो इसलिए आपसे ये सवाल पूछा है मैंने कि आप शिक्षित हैं तो आपको कितना फायदा लगता है ये मतलब डेयरी फार्मिंग में, कृषि करने में आपको क्या लगता है शिक्षा का कितना महत्व है इस चीज में?
2: मैम, अगर आप पढ़े लिखे हो तो
1: जी
2: इसमें आपको बहुत सहायता मिलती है मैम।
1: जी
2: दो प्रकार से डेयरी की जाती है, एक
1: जी
2: तो हम जो हमारे पौराणिक लोग करते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे,
1: जी
2: पर पढ़ाई का ये फायदा मिलता कि थोड़ा आधुनिकता मिल जाती है हमें। तो
1: जी कार्य करने में
2: मैं
1: आसानी हो जाती है, क्योंकि
2: जी
1: पहले के जमाने में तो जो अशिक्षित लोग थे वो जब कृषि कार्य करते थे तो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और उनके पास कोई मशीन या फिर कोई ऐसा उपकरण नहीं होता था जिससे उनका काम आसान हो जाए।
2: जी मैम,
1: तो आजकल जो है, जो शिक्षित लोग हमारी हैं, वो जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो

0: डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनको शिक्षित होना बहुत जरूरी है।
1: मेरा मानना तो यही है मैम।
0: जी तो पंकज जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोगों को दूध पहुंचाते हैं और एकदम प्योर दूध मिलना आजकल बहुत ही मुश्किल काम है और आप वो सबसे वो कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। तो आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल किया है और आज हमारा लोकमंजरी कार्यक्रम है, इसमें हम आपके पसंद के लोकगीत या रागिनी आपको सुनाते हैं। तो अगर आप कोई लोकगीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम अपने कार्यक्रम में उसको चलाएंगे आपके लिए।
1: जी मैम बिल्कुल मैम, एक सॉन्ग है नरेंद्र सिंह वैजी जी का
0: जी,
1: लयू छू भाग छाटी के,
0: लयू छू भाग छाटी के।
1: जी मैम
0: जी, अगर ये मेरे को अपने सिस्टम में मिला तो मैं आपको जरूर चलाऊंगी, नहीं तो मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी का ही कोई गढ़वाली गीत आपके लिए चला दूं तो चलेगा पंकज जी?
1: जी मैम, जी मैम, उनके गाने तो बेहतरीन होते हैं।
0: जी धन्यवाद पंकज जी, आपने हमें कॉल किया और हमारे कार्यक्रम के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: ये थे हमारे श्रोता पंकज और रश्मि, इनकी पसंद का एक लोकगीत सुन लेते हैं जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी की आवाज़ में।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता पंकज और रश्मि को ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा और वे ऐसे ही हमें कॉल करते रहेंगे और हमसे अपनी पसंद के गीत बताते रहेंगे। साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं जिनका नाम है रमेश चंद्र नामदेव। इन्होंने हमें पत्र लिखा है गांव टिकोला कला उत्तराखंड से, और ये हमारे रेगुलर श्रोता हैं। इन्होंने हमें पत्र लिखा है, आपके नियमित व पुराने श्रोता हैं, आकाशवाणी देहरादून के प्रत्येक कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते हैं, सभी कार्यक्रम सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लोक मंजरी कार्यक्रम जो है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति जितने भी लोग करते हैं वे बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो जो ये हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र नामदेव जी, आपने हमें पत्र लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही पसंद करते रहिए और हमें हमेशा पत्र लिखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अन्य श्रोताओं से।
5: धन्यवाद। हेलो
6: हेलो
5: हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? कार्यक्रम लोक मंजरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हम जान सकते हैं आप कौन बात कर रहे हैं?
6: मैं थोड़ा देर से बोल रहा हूँ।
5: अच्छा, चंद्रवनी से बोल रहे
6: हैं
5: जी? तो आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं?
6: हाँ, सुनते रहता हूँ।
5: अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए हमें।
6: मेरा नाम है कामरूप देवराणी।
5: अच्छा, तो आप क्या करते हैं कामरूप जी, आप क्या काम करते हैं?
6: मेरे पशु हैं, पशुपालन हूँ मैं।
5: अच्छा, पशुपालक हैं आप, तो आप दूध उत्पादन करते होंगे?
6: हाँ।
5: अच्छा, तो कब से आप ये पशुपालन कर रहे हैं?
6: मेरे को हो गए कोई 40 साल के से।
5: 40 साल से आप पशुपालन कर रहे हैं जी? तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप हमारे कार्यक्रम, ये जो हमारा लोक मंजरी कार्यक्रम है, इसमें हम अपने किसान साथियों को उनके पसंद के लोकगीत या फिर कोई रागिनी सुनाते हैं, तो अगर आपकी पसंद का कोई लोकगीत है, कोई रागिनी आप सुनना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं।
6: अच्छा, धन्यवाद आपका।
5: आप कोई लोकगीत सुनना चाहते हैं तो आप बता दीजिए।
6: लोकगीत सुना दो करवाली।
5: ठीक है, हम आपके लिए लोकगीत चला देते हैं, और आपने हमें कॉल किया, हमारे कार्यक्रम को पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद आपके कार्यक्रम का, धन्यवाद।

0: का धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, लोक मंजरी में आपका स्वागत है। कौन
0: जी जी धन्यवाद मैम
1: बात कर रहे हैं?
0: जी। मैं शमसुद्दीन बात कर रहा हूँ, सहारनपुर डाडल गांव से। जी
1: अच्छा शमसुद्दीन जी, आप क्या करते हैं वहां पर?
0: ऐसे तो खेती करा है, बगीचे हैं हमारे, आम के बगीचे हैं, 20-25
1: आम के
0: दुकान
1: बगीचे हैं, तो आप
0: जी।
1: काफी मेहनत करते हैं और आम का उत्पादन करते हैं आप।
0: जी बिना मेहनत के तो कुछ भी ना हो जी।
1: अच्छा, तो आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं लोक मंजरी?
0: जी सुन लें जब कभी, जो इस टाइम पे आ जाए, जिस टाइम पे हम फ्री हो तो सुन ही लें जी, अच्छा लगे कार्यक्रम तो बढ़िया आपका।
1: अच्छा, तो आप आज हमने आपका जो हमारा जो कार्यक्रम है आज का लोक मंजरी, इसमें हम आपके पसंद के गीत और रागिनी चलाते हैं, तो अगर आप कोई गीत या कोई रागिनी या कोई लोकगीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए जरूर वो चलाएंगे।
0: जी ऐसे तो भी कमी सुने हम गाने पर, कोई अच्छा सा गाना सुना देते जी, आप पहाड़ का ही सुना देते कोई जो, तो अच्छा लगता जी यहाँ से।
1: जी शमसुद्दीन जी, हम आपके लिए जरूर एक लोकगीत सुनाएंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमें ऐसे ही कॉल करते रहिए और आगे हमारे कार्यक्रम को हमेशा ही सराहना दीजिए।
0: जी जरूर जी मैम,
1: धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कार्यक्रम लोक मंजरी में आपका स्वागत है, कौन बात कर रहे हैं?
2: जी मैं सीमा बात कर रही हूँ,
1: सीमा जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सीमा जी
2: ऋषिकेश से जी।
1: ऋषिकेश से, तो आप ऋषिकेश में क्या काम करते हैं? आप किसान ही काम करते हैं, कृषि में कोई काम करते हैं आप?
2: जी हाँ जी, मैं और हमारा जो परिवार है हम लोग सब्जियों का उत्पादन करते हैं।
1: अच्छा, तो आजकल फिर लौकी कद्दू और ये सब तोरी वगैरह हो रखा होगा आपके खेतों में?
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आजकल
1: जी,
2: उसी
1: तो
2: का
1: आप
2: ही
1: हमारा
2: सीजन
1: कार्यक्रम
2: है।
1: सुनते हैं लोक मंजरी?
2: हाँ जी हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सब परिवार पूरा साथ मिलकर ही सुनते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ जी
1: तो हमारा कार्यक्रम हर शनिवार को आता है और आप इसे जरूर सुने सुना कीजिए।
2: हाँ
1: तो
2: जी
1: आप बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई गीत सुनना चाहते हैं, कोई रागिनी सुनना चाहते हैं, तो हम आपके लिए जरूर चलाएंगे।
2: हाँ जी, प्लीज आप अपनी कोई भी अपनी मनपसंद की एक रागिनी या फिर गीत मुझे सुना दीजिएगा।
1: जी, आपकी पसंद की हम रागिनी या फिर लोकगीत आपको जरूर सुनाएंगे और आपने हमको कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी शुक्रिया।

हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये रागिनी ज़रूर पसंद आई होगी। साथियों, हम बात कर रहे थे कृषि में शिक्षा के महत्व के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक बड़ी आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है। कृषि केवल भोजन उपलब्ध नहीं कराती बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था को भी एक महत्वपूर्ण आधार देती है। और आधुनिक समय में कृषि का विकास, किसानों की उन्नति के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा को नई तकनीकों, उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि यंत्रों तथा वैज्ञानिक खेती के तरीके की जानकारी प्रदान करती है। शिक्षित किसान मौसम, मिट्टी, फसलों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे उत्पादन जो है हमारे साथियों का बढ़ जाता है, खेती जो है अधिक लाभदायक बनती है। ये आप लोग भी महसूस करते होंगे। कृषि शिक्षा के माध्यम से किसान जल संरक्षण, जैविक खेती, कीट नियंत्रण तथा उर्वरकों की सही उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे जो है हमारे खेत में जो है लागत कम आती है और पर्यावरण भी जो है हमारा सुरक्षित रहता है। आज के डिजिटल युग में शिक्षित किसान मोबाइल ऐप से, इंटरनेट के उपयोग से बाजार के भाव, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो हम आसानी से ले पाते हैं। इसके अलावा कृषि शिक्षा युवाओं को कृषि क्षेत्र के नए अवसरों और नव विचारों के साथ प्रेरित करती है। इससे जो हमारे किसान साथी हैं वो जो उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं और ग्रामीण विकास को इसमें बढ़ावा मिलता है। और कृषि जो है वो विकास और किसान के लिए की जाती है, समृद्धि के लिए की जाती है। शिक्षित किसान ही जो है आधुनिक और टिकाऊ कृषि को अपनाकर आगे बढ़ सकता है और आर्थिक प्रगति कर सकता है। कृषि में शिक्षा किसानों को ज्ञान, कौशल और नई तकनीकों से जोड़ती है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है और किसानों का जीवन जो स्तर है वो बेहतर हो जाता है। इसलिए कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना भी एक ज़रूरी कार्य है। और हमारे जितने भी शिक्षित किसान हैं वे आधुनिक तरीके से जब खेती करते हैं तो उनके खेत में उनको ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा उत्पादन होता है और इससे हमारे किसान साथियों का जो है अर्थव्यवस्था बढ़ती है। साथियों, आप भी हमें पत्र लिख सकते हैं और हम आपके पत्र को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप पत्र लिखने के लिए हमारा पता जो है नोट कर लीजिए। पता हमारा है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून, पिन 248001। आप हमें ईमेल

कर सकते हैं साथियों। ईमेल करने के लिए हमारा पता है jagatkrishi@gmail.com और लोक मंजरी हमेशा हर शनिवार को आता है, तो आप शुक्रवार को हमें कॉल कर सकते हैं। आप नंबर लिख लीजिए 7088001382, तो इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं शनिवार को एक मतलब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में। इसी के साथ मुझे यानी वीना शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार नगदगढ़ मी छू श्रुति शर्मा। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल उत्तराखंड भवन व अन्य सैन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डक विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के सहायता राशि बांटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भरक सभ्य कॉमन सर्विस सेंटर मा योग शिविरों का आयोजन करी जल। पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन मा उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करनक लीजिए केंद्र सरकारल उत्तराखंड पुलिस के सम्मानित करो। और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र सांसद अजय भट्टल जमरानी बात परियोजना निरीक्षण करो।

0: अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4,400 है अधिक डीबीटी के माध्यम लगभग 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों खातन में भेजी। यो दौरान मुख्यमंत्री श्रम विभागक श्रमिकों कल्याण योजनाओं की जानकारी ज्यादा है ज्यादा लोगों तक पुजूणक निर्देश दी। उन्होंने कहा कि जग जग क्षेत्र में शिविर लगाबेर पात्र श्रमिकों के ये योजनाओं का लाभ दी जाओ। मुख्यमंत्री को कि श्रमिकों काम करनी जागन पास से जरूरी सामग्री उपलब्ध करूण व्यवस्था करी जाओ तब भी उनके सुविधा मिल सकेली। उन्हें श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें नांतिनक शिक्षा के बढ़ावा देनक लीजिए विशेष शिविर आयोजित करण पर जोर दें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर रहे उच्च न्यायालय अब 29 जून के खुलल। उच्च न्यायालय कैलेंडर के अनुसार हाईकोर्ट में 22 जून है 25 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित रोल और 26 जून के मुहर्रमक अवकाश रोल। भारत निर्वाचन आयोगक उप निदेशक अपूर्व कुमार सिंह नेतृत्व में 3 सदस्यीय दलल रुद्रप्रयाग जिलक दौर कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियानक निर्वाचन साक्षरता गतिविधियों जायजा ले। यक अंतर्गत आयोगक दलल अधिकारियों जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल मिश्रा धे मिलबेर SIR अभियानक प्रगति गणना प्रपत्रों विवरण एवं संग्रहण डिजिटलाइजेशन कार्य और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं के लिए समीक्षा। अधिकारियों को कि जागरूक मतदाता ही सशक्त लोकतंत्र का आधारशिला होनी। विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों दे निर्वाचन आयोगक अधिकारी सोशल मीडिया मंचों के फॉलो करणक और ECI नेट ऐप डाउनलोड करणक ले अपील करी। भारत निर्वाचन आयोगक निर्देश पर नैनीताल में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानक अंतर्गत गणना प्रपत्रों डिजिटलाइजेशन एवं निर्वाचन नियमावली हैं संबंधित कार्यों प्रगति के लिबेर बैठक भई। बैठक में राज्यक अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडेल को कि सभ्य गणना प्रपत्रों शत प्रतिशत डिजिटलाइजेशन बखत पर त्रुटि रहित पुर करी जाल। उन्होंने कहा कि BLO ऐपक माध्यम प्राप्त आवेदनों के निस्तारण प्राथमिकता करणक दगड़ डुप्लीकेट व मृत मतदाताओं नामक नियमानुसार हटाई जाओ। डॉक्टर जोगदंडेल को कि मतदाता सूची की शुद्धता निर्वाचन प्रक्रिया रीढ़ छू या मैं कै प्रकारक ले लापरवाही नहीं हो चे।
1: या वो दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कहीं पर नेटवर्क शैडो एरिया होने के कारण थोड़ा प्रगति कम आ सकता है, बट अभी तक उस पर क्या उपाय योजना है क्या कार्य योजना है वो अगर उन्होंने तैयार कर लिया होगा तो उसमें आगामी 2 से 4 दिनों प्रगति आ सकती है। 7 जुलाई तक पूरा होना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर SDMs एंड AERs रिव्यू कर रहे हैं, उस रिव्यू के आधार पर कोई अगर उपाय योजना करनी है कहीं कार्य योजना बनानी है स्ट्रेटेजी चेंज करना है वो कार्रवाई भी कर सकते हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रदेश भरक सभ्य कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन करी जल। यह कदगढ़ नागरिकों के योग प्रति जागरूक करण लीजी विशेष गतिविधियां संचालित करी जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन एवं सामूहिक योग कार्यक्रम सिद्ध प्रसारण ले कॉमन सर्विस सेंटर केंद्रों पर करी जल। यो शिविर में स्थानीय नागरिकों महिलाओं युवाओं विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के योगाभ्यास कराई जल और योग धे जुड़ी हुण वाल फैद के जानकारी ले उनन के दी जल। कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड राज्य कार्यालय सभ्य जिला प्रबंधकों एवं ग्राम स्तरीय उद्यमों के अपन अपन क्षेत्र में योग शिविर आयोजित करण व ज्यादा है ज्यादा नागरिकों के सहभागिता सुनिश्चित करण पर के लिए निर्देश दी। कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार आपू लोग यो बखत आकाशवाणी देहरादून बटेक सुनलो छा। उत्तराखंड पुलिस के वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी कार्य करने के लिए केंद्र सरकार राज्य पुलिस के लिए संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार हैं सम्मानित करो। यह प्रतिष्ठित सम्मान देश भर में पासपोर्ट आवेदनों पुलिस सत्यापन संबंधी प्रदर्शन के आधार पर दी गो। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विदेश मंत्री डॉ SJ उत्तराखंड पुलिस के यो सम्मान दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यो उपलब्ध देख लीजिए उत्तराखंड पुलिस के बधाई देते हुए कहो कि नागरिकों के पारदर्शी एवं बखत पर सेवा उपलब्ध करूण स्वीकारक सर्वोच्च प्राथमिकता छू। और यह उपलब्धि उही दिशा में करी जा रही प्रयासों के सफलता का प्रतीक छु। उन्होंने आशा व्यक्त करी कि भविष्य माले उत्तराखंड पुलिस नागरिकों की सेवा में यस्सी के उत्कृष्ट प्रदर्शन करल राज्य गौरव बढ़ाते रोली। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठल बताए कि यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया के बखत पर पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनक लीजिए सतत प्रयासों का परिणाम छू। ऊण वाल कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार पुलिस तैयारियां तेज कर रही। यही क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात निशा यादवल राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न अंडरपास फ्लाईओवर व दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हैं हरिद्वार ऊण वाल बाटन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले। यो बखत पर पुलिस अधीक्षक यातायात बताए कि कावड़ मेल है पहली सभ्य जरूरी निर्माण और सुधार काम बखत पर पूर कर ली जल जैक वजल श्रद्धालुओं और स्थायी नागरिकों के लिए असुविधा सामना नहीं करण पड़ल। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्टल आज जमरानी बाद बहुउद्देशीय परियोजना समीक्षा करी। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के परियोजना से जुड़ी सभ्य बाधाओं के प्राथमिकता का साथ पुरकरणक ले निर्देश दी। सांसद अजय भट्टल को कि जमरानी बाद उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन परियोजना छू यह पुर हुण पर हल्द्वण लालकुआ क्षेत्र दगड़ दगड़ तराई भाबर के सिंचाई व पेयजल सुविधा मिल ली। श्री भट्टल को कि परियोजना है 14 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हल और बाढ़ नियंत्रण में ले मदद मिल ली। उन्हें प्रभावित परिवारों पुनर्वास मुआवजा वितरण और विस्थापन संबंधी प्रकरणों के लिए जल्द निपटूनक निर्देश दी। सांसद परियोजना के बखत पर पूर करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं के मैन पावर और मशीनरी बढ़ाने के लिए निर्देश दी।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने वाला हूँ कि यथाशीघ्र वो पैसा अवमुक्त हो जाएगा, तो क्योंकि गंगेटियन क्षेत्र के लिए पूरा पानी यहाँ से जाना है। हम यहीं से वहाँ के जलाशयों में पानी दे रहे हैं, नहरें लगभग लगभग हमारी तैयार हैं। तो एक बड़ी बात यहाँ हो रही है जो करीब करीब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, माननीय केसी पन जी हमारे वरिष्ठतम लोग रहे हैं देश के, आप जानते हैं, माननीय कोश्यारी जी, सभी लोग इसमें लगे रहे, उनका आशीर्वाद रहा कि हमको ये मामला उठाने का मौका मिला। और तब से लेकर लगातार हम इसी प्रकार की मीटिंग्स और जो इसके रुकावटें थी उन रुकावटों को दूर करना, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसकी भरपाई करें जो इतने लंबे सालों तक नहीं हो सकता है।
0: भारत मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून प्रदेशक 8 जिलन कुछ हिस्सों में बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है तेज हाव चलनक येलो अलर्ट जारी करो। मौसम विज्ञान केंद्र आज देहरादून टिहरी रुद्रप्रयाग चमोली उत्तरकाशी बक्सर पिथौरागढ़ और नैनीताल में कै चाल चमकण ढानबुई तेज बरखा येलो अलर्ट ले जारी करो। यह दगड़ हिमालयी क्षेत्र में ह्यू ले पड़ सकूं मौसम के देखते हुए विभागल यात्रियों यात्रियों और स्थानीय लोगों के विशेष सतर्कता बरतूनक सलाह दे रखी। मौसम विभागल यात्रियों के पहली मौसम जानकारी प्राप्त करनक ले अपील करी छू। अंत में मुख्य समाचार एक बारी आई सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड विभिन्न योजनाओं लाभार्थियों के सहायता राशि बांटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भरक सभ्य कॉमन सर्विस सेंटर में योग शिविरों का आयोजन करी जल। पासपोर्ट आवेदनों के सत्यापन में उत्कृष्ट एवं प्रभावी काम करनक लीजिए केंद्र सरकार उत्तराखंड पुलिस के सम्मानित करो। और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र सांसद अजय भट्टल जमरानी बाद परियोजना का निरीक्षण करो। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचारों की अंक यहीं समाप्त हूं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं राजपूत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म संगीत में दूसरा आदमी फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, राजेश रोशन का मधुर संगीत, मजरूह के बेहतरीन बोल।

0: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून एक विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार एक बार साल सेवा सुशासन और विकास में मीचू अपन दगड़ी श्याम भट्ट। पिछले बार साल में हमर देशल विकासक दिशा में नई कदम बढ़ा रख्यान और एमए सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका छे और इनु में विशेष चर्चा करने के लिए जी मेर दगड़ छन शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय एक विज्ञान विषय शोध छात्रा नेहा जोशी। इनोक स्वागत छे हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। यह सालों में वित्तीय समावेशन, स्वच्छता, डिजिटल तकनीक, आवास, रोजगार और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में बहुत ठुल ठुल कदम सरकार द्वारा उठाई जा रही।
1: बिल्कुल नेहा जी, जैसे हम देखने साल 2014 बैठे 2026 तक सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और देशक विकास के लिए जी बहुत योजना शुरू कर छन। इन्हों में एक एक बात करूं तो पहली हम देखनो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि साल 2014 में 28 अगस्त बैठे शुरू कर रखी और एक उद्देश्य छो हर परिवार के बैंकिंग व्यवस्था बैठे जोड़न।
2: बिल्कुल, और यह योजना तहत शून्य बैलेंस पर बैंक खाता खोलेगी। यह सरकार योजनाओं पे सिद्ध लाभार्थियों खाते में पूजन भेटो और बैंकिंग सुविधा आम लोगों तक ले पूजी।
1: बिल्कुल, ए मैं आम लोगों बैंकिंग सुविधा दिलाऊं छू बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य छू। और बात करूं हम अगली योजना तो ये मैं स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वपूर्ण योजना छे, जो कि 2 अक्टूबर 2014 के शुरू करी गई छी और एक उद्देश्य छू देश का साफ स्वच्छ बनून और खुल में शौचक समस्या का समाप्त करन।
2: और यह अभियान तहत करोड़ों शौचालय बढ़ाएगी और लोगों के स्वच्छता प्रति जागरूक करेगी।
1: बिल्कुल,
2: ये स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वास्थ्य के बढ़ावा ले मिलो।
1: बिल्कुल,
2: तो अगिल अगर सरकार द्वारा शुरू करी हुई योजना की बात करूं, यह योजना छू मेक इन इंडिया चेक शुरुआत 25 सितंबर 2014 करेगी और यह उद्देश्य भारत के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक ठुल केंद्र बनू छी।
1: बिल्कुल, और एल देश विदेशक जन कंपनी छन उन भारत में निवेशक लीजिए प्रोत्साहित बहन विगत अगर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्र में हमारे देश में उल्लेखनीय प्रगति लिए देखने का मिली। और एक योजना छी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नाम है, एक उद्देश्य नान व्यापारियों और युवाओं के बिना गारंटी ऋण उपलब्ध करवाउन छियो।
2: बिल्कुल, यह योजना के माध्यम लाखों लोग अपन व्यवसाय शुरू करो।
1: बिल्कुल,
2: या फिर वीक विस्तार करो। यह स्वरोजगार और नान उद्योगों के बढ़ावा मिलो।
1: बिल्कुल, ए में हम समझ सकनो की जन योजना शुरू करी जा रहे हैं इन्होंने हर वर्ग के सम्मिलित कर रखो।
2: और ये अलावा अगर हम अब अगली योजना की बात करूं तो यह योजना छू डिजिटल इंडिया योजना जैक शुरुआत 1 जुलाई 2015 हो करेगी।
1: बिल्कुल,
2: यह उद्देश्य सरकारी सेवाओं के डिजिटल माध्यम लोगों तक पहुंचन छी और जय लोगों मदद ले करी।
1: और ये अभियान के कारण जो ऑनलाइन सेवा छन या फिर डिजिटल भुगतान छन उन बहुत तेजी बढ़िया। आज एक बखत में तो हम देखनो जो UPI छे वो एक करोड़ों लोगों तक आसानी पूज्यक माध्यम छे और अपन मोबाइल बैठे सब मन की भुगतान कर सकन। यही में जैसे कि हम देखनो जो जरूरतमंद छन या फिर गरीब मन की छन उनके पक्क घर उपलब्ध करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू करी गई।
2: बिल्कुल, यह योजना तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पात्र परिवारों के आर्थिक सहायता दी जाए और यह लोगों अपन घर बनना सपने ले पूरा हो, उनर जीवन स्तर में ले सुधार आ।
1: बिल्कुल,
2: और अब अगर अखिल भारत सरकार द्वारा शुरू करी हुई योजना की हम बात करनू तो यह योजना छू स्किल इंडिया मिशन योजना जैक शुरुआत 2015 में 15 जुलाई बटी करेगी और यह योजना युवाओं के रोजगारक लीजिए आवश्यक कौशल प्रदान करना उद्देश्य शुरू करी जाए छी।
1: बिल्कुल, जैसे हम पहले हम योजनाओं की बात करना चाहते उन छीन की कृषि के गरीबों के कुछ सुविधाओं के उपलब्ध कराई जो, लेकिन अब जन इन योजना हम बात करने लग रहे हैं इन छिन कुछ युवाओं के या फिर जन उन्हों कौशलता छे विकप बढ़ोने के लिए जिन योजना शुरू करी गए। और स्किल इंडिया जो योजना छे एल बहुत भल काम करी जैमे युवा अपन योग्यता अनुसार रोजगार या फिर स्वरोजगार उन अपन ली सको और एल देश में जो कुशल मानव संसाधन छे विकप तैयार करने वाले बल मिली। ऐसी एक योजना छी स्टार्टअप इंडिया जो की साल 2016 में शुरू करी गए और इमे जो युवाओं में नवाचार छे या फिर उनमें उद्यमिता के बढ़ावा देने के लिए एक शुरू करी गो।
2: और स्टार्टअप इंडिया योजना तहत नई उद्योग शुरू करने वालों के आसान पंजीकरण, कर में थोड़ा बहुत रियायत और निवेशक ले अवसर उपलब्ध कराएगी। यह भारतक स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी विकसित हो और दूसरी जो योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू करी गई यह योजना छी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह शुरुआत 1 मई 2016 करी गई। यह उद्देश्य गरीब परिवारक महिलाओं के स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करण छी।
1: बिल्कुल, जैसे हम देखछा जो गरीब परिवार महिला छीन या फिर गो घरों में रहने वाली महिला छीन, उनके जो धुआं कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्या छीन, उनका कम करने के लिए उनके निःशुल्क LPG कनेक्शन दिए गए, जल की उनका जीवन सुरक्षित और सुविधाजनक बन सको।
2: बिल्कुल,
1: और इसी एक पहल छी स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण हम कह सकनु जो छी आयुष्मान भारत योजना, जैक शुरुआत 2018 में सितंबर महीने में करी गई छी।
2: और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के हर साल 5 लाख तक कैशलेस उपचार उपलब्ध कराई गो। यह गरीब परिवारों के गंभीर बीमारियों के इलाज में बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता ले मिली और यह उनर लीजिए बहुत आर्थिक तौर पर बहुत लाभदायक ले सिद्ध है रहे।
1: बिल्कुल नेहा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं हम जो मनखिक स्वास्थ्य सुधारक लीजिए जो योजना शुरू करी गई, एक अलावा हम देखने जो हमारे देश से किसानों के लिए विमले कार्य करने की बहुत जरूरत थे, यही कारण सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करी गई। एक उद्देश्य छो की किसानों को आर्थिक सहायता दी जो।
2: बिल्कुल, किसान सम्मान निधि योजना तहत पात्र किसानों के हर साल सिद्ध उनर बैंक खातों में 6,000 रूपए भेजी जानी। यह खेती के आवश्यक खर्च पूर्ण करण में उनके बहुत सहायता मिले।
1: बिल्कुल,
2: और देश के लगभग हर किसान आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले नागरी।
1: इन जन योजना छन इन कन का हमर जो देशक नागरिक छन और हर वर्ग बैठक जुड़िया छन उन सबों के एक तरफ बैठी योजना का लाभ दिलोन में लग रहे हैं। जैसे कि इन योजना छन हर ग्रामीण परिवार तक पूजनक लीजिए इनमें बढ़िया के काम करे जन लग रहा, और जल जीवन मिशन एक घोषणा ले जब करी गए थे एक लक्ष्य छो की हर ग्रामीण परिवार तक हर घर में नलक माध्यम साफ पानी उनको दी जो।
2: और जल जीवन योजना लाखों घरों में नलक कनेक्शन पुजरी जेल महिलाओं और नंदिनों की मेहनत कम है रहे। और स्वच्छ पानी मिलने स्वास्थ्य पर ले सकारात्मक प्रभाव ये पड़ रहा।
1: बिल्कुल, और ये का देखते हुए जन नई एक्सप्रेसवे छन, राष्ट्रीय राजमार्ग छन, रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डों को विकास करी गो, जेल की यात्रा तेज हो, सुरक्षित हो और सुविधाजनक बन रहो। और इसी के उल्लेखनीय जन प्रगतिक बात करो थे रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में ले भारत बहुत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा।
2: बिल्कुल, और सरकार स्वदेशी रक्षा उत्पादन के बढ़ावा दे और रक्षा निर्यात में वृद्धि है और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने बहुत से महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी।
1: बिल्कुल,
2: यह के अलावा भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के लिए शुरुआत करी गई 5 अगस्त 2019 हूँ जम्मू कश्मीर बटी अनुच्छेद 370 अधिकांश प्रावधान हटाएगी।
1: बिल्कुल नेहा जी, जैसे कि इन 370 अनुच्छेद छी इनमें कुछ यश छी की जन देशक एकता में बाधा बननी छी और उन विकासक दिशा में कहीं न कहीं एक रुकावट बननी छी, तो एक सरकारल एक राष्ट्रीय एकीकरण और विकासक दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम बतावेर यो निर्णय लेस और हमर देशक जो राजनीतिक घटनाक्रम छन उनमें ले एक महत्वपूर्ण रहो।
2: बिल्कुल,
1: वी के अलावा अगर हम बात करूँ इन कानूनों में तीन तलाक कानून जो की 2019 में पारित करी गो यूले एक महत्वपूर्ण कानून छो, जैमे की जो तीन तलाक प्रथा छी विका समाप्त करने के लिए ये कानून बनाई गो।
2: और सरकार के अनुसार यह कानून का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के कानूनी सुरक्षा और समान अधिकार प्रदान करना छी। और यही कानून तहत भारत सरकार द्वारा महिला आरक्षण कानून ले शुरू करी गो, यह कानून के साल 2023 में पारित करी गो।
1: बिल्कुल, जो महिला आरक्षण कानून छो वो हमारे देश में बहुत जरूरी छो, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने का प्रयास करी गो और एमे उनके राज्य विधानसभाओं लोकसभा सब जगह 33% आरक्षण प्रावधान करी गो। वी के अलावा अगर हम बात करूं जो एक महत्वपूर्ण योजना छी योजना को या हम एक एक आधुनिक सुविधाओं के जो लोकतांत्रिक परंपरा छे वी में बनाई रखने के लिए जी कहते एमे नई संसद भवन के निर्माण ले बहुत महत्वपूर्ण एक बात छे जय की साल 2023 में एक उद्घाटन करी गो।
2: बिल्कुल श्यामजू, और नई संसद भवन आधुनिक सुविधाओं बटी युक्त छू और भारत एक लोकतांत्रिक परंपरा और भविष्य आवश्यकताओं के ध्यान में धरवे ये के पढ़ाई जेरो।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी समाचार देहरादून जो विशेष कार्यक्रम छे मोदी सरकार एक 12 साल सेवा सुशासन और विकास में अमूल बात करी जन भारत सरकार द्वारा इन 12 सालों में जन कल्याण लीजी योजना चलाई जा रहे हैं उन्होंने कति योगदान दिया और जन देशक नागरिक छन उनके इन कष्ट समझना हम समझ सकनो की 12 सालों में सरकार कृषि स्वास्थ्य शिक्षा डिजिटल तकनीक आधारभूत संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इन योजना चला है और हम समझ सकनो की लोकतंत्र में जन हम सब नागरिक छा इनो के लिए इन बहुत जरूरी है जचीन और कोई लिए देशक विकास के लिए इन बहुत महत्वपूर्ण हो चीन। तो आकाशवाणी समाचार देहरादून विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार 12 साल सेवा सुशासन और विकास में हम बात करने लग रहे सरकार जन 12 सालों में चलाई गई मुख्य योजना छीन एंड अपने दगड़ी श्याम भट्ट के एक कार्यक्रम का संपन्न करने। नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति योजना संवाद। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेशों और प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला कि सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज
1: और रमेश चंद्रा का।
0: जी
1: कल्पना जी, मैं देख रहा हूँ आपके पास कुछ रंग बिरंगे पत्र हैं
0: जी
1: और कुछ मैसेज भी आए हुए हैं,
0: जी
1: क्यों ना इनको पढ़ने का सिलसिला आप शुरू कीजिए।
0: जी कार्यक्रम में पहला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काली, और लिखते हैं कि रमेश चंद्रा जी जब अल्मोड़ा पर थे तब हेल्थ टिप्स दिया करते थे, बड़ा फास्ट बोलते थे, लगता है देहरादून AIR पर प्रमोशन लेकर आए, धीरे धीरे बोलते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में कल्पना पंकज द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम चाहे फोन इन हो, आपका पत्र मिला हो या व्हाट्सएप फरमाइश हो, एकदम से एक्सप्रेस की तरह दौड़ती रहती है। लिखते हैं कि व्हाट्सएप फरमाइश में इतने नाम पढ़े जाते हैं कि क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा। आखिरी समय यानी कि 11:59 के किनारे तक कार्यक्रम में नाम पढ़े जाते हैं, लेकिन इतना होकर भी एक भी प्रोग्राम में गलती नहीं होती। दिल्ली से जाने वाला हिंदी बुलेटिन का गोइंग ओवर भी एकदम सही फासले में सही से देती है। और आप लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रमों को 16 जून 2026 को मैंने जलगांव से मुंबई जाते हुए सुबह 6 बजे से सुना। आपका प्रसारण कार में सफर करते हुए मैंने पूरी मॉर्निंग सभा में प्रोग्राम सुना, यानी कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। सभा का संचालन कर रही थी शिखा दीक्षित जी, बेहद खूबसूरती से इनकी उद्घोषणाएं लगी और इनका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून भी पसंद आया। और लिखते हैं कि एक प्रोग्राम जो हमारे देहरादून आकाशवाणी से दूरदर्शन पर प्रमोट हुए, आदरणीय अनिल भारती जी शायद चिंतन प्रोग्राम में थे, उन्हीं की बेहतरीन आवाज में मैंने प्रोग्राम चिंतन सुना। और लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर पत्र लंबा हो रहा है, इस प्रोग्राम में आप सभी स्टाफ वालों का मैं अभिनंदन करता हूँ और सभी के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
1: जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले जी, आपने एक बहुत ही विस्तार से पत्र लिखा, ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। और आपने कल्पना पंकज जी को और हमें सलाम भेजा, हमारी तरफ से भी आपको प्यार भरा आदाब। आप लिखते हैं कि जब रमेश चंद्रा आकाशवाणी अल्मोड़ा में थे और हेल्थ टिप्स कार्यक्रम देखते थे, थोड़ा फास्ट बोला करते थे। चलो कम से कम आपको ये बातें याद तो हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ आकर जो रमेश चंद्रा की स्पीड है थोड़ी कम हो गई है। अल्मोड़ा में जो हेल्थ टिप्स कार्यक्रम का चंक था वो था 5 मिनट का, और 5 मिनट के अंदर हमें बहुत सारी सूचना अपने श्रोताओं तक देनी होती थी। उस कार्यक्रम को हम बहुत ही फास्ट करते थे, लेकिन आकाशवाणी देहरादून उनमें जो हेल्थ के कार्यक्रम है वो 15 मिनट के हैं, और आपका पत्र मिला भी अक्सर 10 मिनट या 15 मिनट का होता है। तो जो एक उचित स्पीड है बातचीत करने की, मुझे लगता है कि उसमें अगर हम पत्रों के जवाब दें ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने कल्पना जी के बारे में लिखा है, फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ती हैं, तो वही बात है कि हमारे श्रोताओं के जो नाम है उनकी फरमाइश है ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो सके तो हमारे श्रोताओं को भी खुशी होगी। तो उनका उद्देश्य यही रहता है नामों को ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ने के पीछे। और आपने शिखा दीक्षित के बारे में लिखा कि उन्होंने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है हमारे आकाशवाणी देहरादून के लिए कि हमारे कार्यक्रमों के जो उद्घोषक हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए हुए कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं। आपने अनिल भारती जी के बारे में लिखा कि उनका चिंतन कार्यक्रम आपने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा। तो सबसे खुशी की बात यह है कि आप हमारे आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रमों को इतना ध्यान से इतना मन से सुनते हैं। और आपने स्वयं ही है कि जब आप यात्रा कर रहे थे जलगांव से मुंबई की, तो आपने सुबह 6 बजे से 11 बजे तक हमारे आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम सुने और आपको अनेक कार्यक्रम पसंद आए।
0: जी
1: तो हम डॉक्टर दिनेश
0: प्रोग्राम और साथ में शाम की भी प्रोग्राम सुनिए, निश्चित ही आपको अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे
1: भाई।

0: दिनेश काले जी, एक प्यारा सा मैसेज लिखने के लिए आपका शुक्रिया।
1: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं मास्टर रमेश चंद्र नामदेव, संजय कुमार नामदेव, डॉक्टर राजन नामदेव, अंशिका, निकुंज, सूर्यकांत और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी पत्र लिखते हैं गांव टिकोला कला, जिला हरिद्वार से। आप लिखते हैं कि मैं आपका पुराना और नियमित श्रोता हूँ, आकाशवाणी देहरादून के प्रत्येक कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनता हूँ, सभी कार्यक्रम सुनने में अच्छे लगते हैं। कार्यक्रम आपका पत्र मिला में हमारा पत्र शामिल नहीं होता, आप मैसेज ज्यादा पढ़ते, हमारे पास बड़ा फोन नहीं है, इसलिए आपकी सेवा में पत्र ही प्रेषित करते हैं। पत्र के लिखने में पत्र पोस्ट ऑफिस में लेकर जाना, पत्र खरीदना, बड़ी मेहनत से पत्र लिखना पड़ता है और पत्र कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है तो हमारी मेहनत खराब हो जाती है। भविष्य में ऐसा ना करें, सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक हमारा रेडियो आकाशवाणी देहरादून से बजता ही रहता है। कृपया थोड़े लिखे को अधिक समझना, आपके यहाँ से सभी कार्यक्रमों को जो प्रसारित किए जाते हैं सुनता हूँ, सबकी प्रस्तुति सराहनीय होती है।
0: मास्टर रमेश चंद्र जी और आपके जो परिवारीजन हैं, इन्होंने टिकोला कला हरिद्वार से हमें एक प्यारा सा पत्र लिखा है, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आपने लिखा है कि आप आकाशवाणी देहरादून के पुराने व नियमित श्रोता हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने लिखा है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में शामिल नहीं होता, तो आज देखिए शामिल हो गए आप। हमें लगता है कि अब आपको इस तरह की कोई शिकायत नहीं रही होगी। आपने लिखा है फोन आपके पास बड़ा नहीं है। श्रोताओं से यही गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो अपने पत्रों के माध्यम से भी आपका पत्र मिला कार्यक्रम में अपनी शिकायतें, सुझाव और प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आकाशवाणी देहरादून सुनते हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और हम यही चाहेंगे कि इसी तरह से जब से आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम शुरू होते हैं और शाम में जब हमारी प्रसारण सभा समाप्त होती है, तब तक इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें, अपनी सुझाव, शिकायतें, प्रतिक्रियाएं अपने पत्रों के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से हमारे साथ साझा करते रहें। सभी का पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, और मैं भी इनसे यही कहना चाहूंगी कि रमेश चंद्र नामदेव जी का पिछली बार भी आपका पत्र मिला कार्यक्रम में पत्र शामिल हुआ था, तो हम आपसे यही कहेंगे कि प्लीज आप कार्यक्रमों को जरूर सुने। और कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से ही, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। आप सभी लिखते हैं, 17 जून को प्रसारित एक कलाकार कार्यक्रम सुनने का सु अवसर प्राप्त हुआ, जो निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली पर केंद्रित था। इम्तियाज अली के विषय में अच्छी जानकारी प्रदान की गई। हम झारखंड वासियों को उन पर बेहद नाज है, क्योंकि वे बेहतरीन फिल्मों का निर्माण करते हैं। यहाँ भी बता दूं, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की भी जन्मस्थली झारखंड ही है और इन कार्यक्रमों हेतु आपको साधुवाद और यही अपेक्षा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सुंदर कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे।
0: भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव जी और आपके परिवारीजन है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, आपने लिखा है कि 17 जून को प्रसारित ये कार्यक्रम आधारित था निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली पर और आपको पसंद आया, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपने लिखा है कि प्रियंका चोपड़ा जी की जो जन्म स्थली है वो भी झारखंड रही है, तो कितनी अच्छी बात है। और हम यही चाहेंगे आपसे कि इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें और अपने मैसेजेस, अपने पत्र इसी तरह हमें भेजते रहें। भारत भूषण जी और आपके परिवारीजनों को मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कार्यक्रम में अगला पत्र लिखते हैं गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। आप लिखते हैं एक शेर, आंखों में नमी मगर दिल में जज्बात दे जाना, आंखों में नमी मगर दिल में जज्बात दे जाना, दिल ना सही अपनी एक याद दे जाना, मिलकर बिछड़ना तो रिवाज है दुनिया का, दूर होकर भी पास होने का एहसास दे जाना। आप लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनते हैं अच्छे लगते हैं, आपके केंद्र से खास खबरें हम बरेली में बैठकर प्राप्त हो जाती है, आपके केंद्र का महिला जगत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसमें घरेलू कामकाज की बातें टिप्स भी बताए जाते हैं, बालमंडल कार्यक्रम भी हमें अच्छा लगता है, इसमें कहानी बहुत अच्छी लगती है, दोपहर में सुगम संगीत कार्यक्रम में कव्वाली और गजलें प्रसारित करते हैं वो भी अच्छी लगती है, सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी ओर से कोई शिकायत नहीं है।
0: लाल मोहम्मद अंसारी जी, लालू मिस्त्री अंसारी जी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी जी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से आपने एक प्यारा सा शेर लिखा है, आंखों में नमी मगर दिल में जज्बात दे जाना, दिल न सही अपनी एक याद दे जाना। तो हम यही कहेंगे कि आकाशवाणी देहरादून की इसी तरह की यादें आप अपने दिल में संजोए रखिएगा और हमारे कार्यक्रम सुनते रहिएगा। और आपने लिखा है कि कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में जो खास खबरें होती हैं वो आपको अच्छी लगी, सुगम संगीत भी आपको अच्छा लगा, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने लास्ट में लिखा है कि इस हफ्ते कोई शिकायत नहीं, ये बहुत ही खुशी की बात है। हम यही चाहते हैं कि हमारे किसी श्रोता को कोई शिकायत ना हो, अगर शिकायत है भी तो आप हमें अपने मैसेज और पत्र से अपनी शिकायतें लिख भेजिएगा। भाई लालू मोहम्मद अंसारी मैसेज भेजने

0: लिए आपका बहुत शुक्रिया। और कल्पना जी, अब समय समाप्ति की ओर है, तो
1: जी
0: क्यों ना कार्यक्रम के समापन में आप हमारे श्रोताओं को मैसेज और पत्र भेजने का पता बता दीजिए।
1: जी हमारे श्रोता नोट करें, कार्यक्रम में आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, और पिन है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। कार्यक्रम में आपका पत्र मिला में व्हाट्सएप नंबर 7088000731 है। और अब इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज
0: और रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के संदेशों और प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला। यह आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सरकार के 12 साल।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
3: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं?
3: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि

0: हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी।
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी।
0: तो इस तरह की जो योजना है। और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इंपॉर्टेंट सशक्तिकरण,
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करती। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
0: जाता है। अब आप देखिए, अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर
1: बिल्कुल
0: किया। और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास की आजादी के बाद 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
2: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लाइक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
2: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
2: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
2: कि आप जो करना चाहे करो,

0: वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है। आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
1: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
0: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
1: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इसमें। और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
0: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
1: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जल खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
0: बहुत बड़ा समर्थन है।
1: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती। या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
0: 6,000 प्रति वर्ष,
1: 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
0: जैसे अभी सर्जना जी बता रही
1: हैं, तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का

0: प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके इसे कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, तभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी। तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं

0: मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जी, जितना जी। रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया जो नए चार लेबर कोड आए हैं कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी एक रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट
0: जो
1: है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा, और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है,
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था। अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई।
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
2: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
2: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल को कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो होगा छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय, जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा 2-3 चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा कितना,
0: रामासर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सरकार के 12 साल ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
6: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
6: यह मोर आंतरिक कामना।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
8: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
5: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
9: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
5: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
7: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
5: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep three-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
9: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
8: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
10: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
8: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village Paharpur. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Pashchim Bango Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi also participated in a grand function to celebrate the state day. Along with Chief Minister Shubhendu Adhikari, he also launched dedicated and laid foundation stones for various development projects.

0: पिछले 12 वर्षों में भारत
1: इन द लास्ट 12 इयर्स इंडिया स्पेस सेक्टर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द रिफॉर्म ऑफ द स्पेस सेक्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेस बेस एंड द इंक्रीज इन द प्राइवेट पार्टिसिपेशन हैव स्टार्टेड अ न्यू रेवोल्यूशन टुडे मोर देन 400 स्पेस टेक स्टार्टअप्स ऑपरेट इन इंडिया विच आर इनोवेटिंग इन एरियाज सच एज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा सर्विस इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न्स स्काई रूट एरोस्पेस इज अ प्रूफ ऑफ दिस चेंज
0: इस परिवर्तन का प्रमाण है
2: थ्रू द ब्रेक थ्रू ऑफ द सेमीकंडक्टर मिशन एंड अ थ्राइविंग प्राइवेट स्पेस सेक्टर इंडियाज जर्नी टुवर्ड अ डेवलप्ड नेशन इज बीइंग रियलाइज्ड टुडे एज एन एम्पावर्ड इंडिया अमन यादव आकाशवाणी न्यूज दिल्ली
3: At least 5 devotees lost their lives and 40 to 50 others were injured after a portion of a temple structure collapsed in Manvad Taluka of Maharashtra's Parbhani district today. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Rescue teams rushed to the spot and launched relief operations immediately. Around 20 to 25 people were rescued from the debris, while nearly 15 injured devotees are undergoing treatment at a nearby hospital. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis have expressed their condolences to the families of the pilgrims who lost their lives in the accident. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of IDY 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the common yoga protocol. More from our correspondent.
4: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai today as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century. Chasing a modest 219-run target, India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
5: Spotlight.
6: This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
7: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
8: नमस्कार, धन्यवाद।
7: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा पर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
8: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
7: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
8: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थान हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है, और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अपन गए थे बेंगलोर में, चलो हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक

0: ये योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रही थी कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
0: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमुख नहीं किया। लेकिन ये साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए, और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही, जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारत वर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस, बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर किया। सिर्फ वहाँ पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया। हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहाँ तो रोड पर करेंगे, लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहाँ पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाए करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने भी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो, ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसे एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, पर 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई, हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े वैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां है, कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भी CSR फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए

उन्होंने कंसेप्ट दिया था। अभी हम नगर पालिका कारपोरेशन नगर पंचायत इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेंगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहाँ सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर

0: की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगेगी कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाए। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहाँ पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहाँ पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों के भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लिवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग तक। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर एयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है, इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया, तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है, तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे भी, वहां पर लोग फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते या करने जाते, कि हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई।
2: धन्यवाद। ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Spotlight.
3: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से

शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल।

बाजी साल 1955 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना
0: और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन दिग दिग दिग।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो।
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हाँ।

पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुम को मेरी लाज, रघुवर तुम को मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्य

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ूं रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं।

0: ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा है। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा, सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख कर के लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई वर्षों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.4।
1: भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
2: नमस्कार। In today's national program of music, we are going to broadcast a classical vocal performance by Dr. Vivek Karmahe.
1: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
2: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
1: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, इंदुशी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
2: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kachalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundkur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna tilwada taal mein nibaddh hai jiski bol hai vaari jaun re tum pe. Dit rachna teen taal mein hai jiski bol hai chalo re bhai ram siya darshan. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
2: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वाणी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: रागश्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसके बोल है कौन गत भई। द्वित रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Ragashri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Rag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics

कौन गत भाई द द्रुत कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो सेट टू एक ताल विद लिरिक्स बेग बेग बेग बेग आओ

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Nadaro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सुहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
4: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
6: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
3: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।